हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जम्पर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम वंदना।

जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान हैं। यही भाव हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का आधार बनता है। हमारी मातृभूमि भी हमें पहचान, संस्कृति, भाषा, इतिहास और अस्तित्व प्रदान करती है। इसलिए भारत भूमि केवल एक भूभाग नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय माता है। इसी भावना का स्वर देता है माँ तुझे सलाम।

जब मनुष्य स्वयं को असहाय, अशक्त और अपने दोषों से घिरा हुआ अनुभव करता है, तब उसके हृदय से यही स्वर निकलता है, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप पतितों का भी उद्धार करने के लिए हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हरि प्रतीत पावन सुने, यह केवल एक भजन की पंक्ति नहीं बल्कि असंख्य भक्तों की पुकार है।

भक्त कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? इस संसार में आपसे बढ़कर पतितों का उद्धार करने वाला कौन है? दीन दुखियों से आपसे अधिक प्रेम करने वाला और कौन है? इसलिए मेरा एकमात्र आश्रय आपके चरण ही है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। गोस्वामी तुलसीदास जी का अत्यंत प्रसिद्ध भक्ति पद है। इसमें भक्त भगवान श्री राम के चरणों के प्रति अपनी पूर्ण शरणागति व्यक्त करता है।

हे मन, भगवान शिव का स्मरण कर, उनके पवित्र नाम का जप कर, क्योंकि वही जीवन में शांति, शक्ति, धैर्य और कल्याण प्रदान करते हैं। शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है। ऊंचे पर्वत की तरह उनका व्यक्तित्व भी हमें ऊंचे आदर्शों की प्रेरणा देता है। वे राजमहलों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में रहते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख वैभव में नहीं बल्कि संतोष और सरलता में है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ अनमोल विचार आज के चिंतन।

0: में।
1: समय का महत्व। नष्ट हुई संपत्ति और खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य निरंतर मेहनत करता है। एक दिन उसे सफलता मिल जाती है। खोया हुआ स्वास्थ्य और नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु खोया हुआ क्षण फिर वापस नहीं आता। समय न तो मनुष्य की प्रतीक्षा करता है और न परवाह। समय का रथ जो तेजी से चल रहा है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक क्षण में विद्या अर्थात ज्ञान प्राप्त करो और कण कण जोड़कर धन पाओ। क्षण भर का समय नष्ट हो जाए तो विद्या कहाँ, और कण नष्ट हो जाए तो धन नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि दिवस जात नहीं लागत बारा, दिन जाते देर नहीं लगती है। जो समय पर जाग नहीं सका वही पीछे रह गया। नदी बहती है, घड़ी चलती है, सूरज चांद और तारे भी विश्राम नहीं करते, तो फिर हम क्यों आराम करें? समय को व्यर्थ न गवाएं, उसका सदुपयोग करें। विद्वान लोगों का समय अच्छे शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत होता है, लेकिन मूर्खों का समय बुरे व्यसनों, लड़ाई झगड़ों तथा निद्रा आदि में ही व्यतीत होता है। जीवन की सफलता का रहस्य समय के सही उपयोग में निहित है। संसार के सभी प्राणियों का समय पर समान रूप से अधिकार है। समय की उपयोगिता साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महान बनाती है। महापुरुषों के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने एक एक क्षण का उपयोग किया, तभी जीवन में उन्हें सफलता मिली। हमें प्रातः शीघ्र उठकर दिन भर के कार्यक्रम की रूपरेखा बना लेनी चाहिए और आज के कार्यों को आज ही संपन्न कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति निश्चित उद्देश्य को सामने रखता है, उसे अपना रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। वह उलझन में नहीं रहता और पूर्ण मनोयोग से उस कार्य की ओर बढ़ता है। समय के महत्व को समझने वाला दुखी नहीं होता। समय के सदुपयोग का तात्पर्य है नियमित होना। जो अपनी दिनचर्या नियमित रखते हैं, वही कुछ कर पाते हैं। समय से सोना, समय से उठना, भोजन, अध्ययन, भ्रमण, मनोरंजन, पूजन आदि का समय निश्चित करें। जो व्यक्ति काम टालने वाले होते हैं, वे सदैव पछताते हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। समय के सदुपयोग से व्यक्ति की उन्नति होती है। अतः बचपन में ही हमें समय के मूल्य का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित होना आवश्यक है और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें खाली समय में स्वाध्याय हेतु अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में देरी से बाद में भी विलंब हो जाता है और फिर उसके बाद के अन्य कामों की सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। पल के अंश में क्या हो जाएगा क्या पता। कहा गया है, का जाने होई है पल के चौथे भाग। अतः हर पल का उपयोग करें। देश और समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। हमें सेवा परोपकार हेतु भी समय निश्चित रखना चाहिए, जिससे देश और समाज की भी उन्नति हो। वर्तमान में विज्ञान का युग होने से हमारे दैनिक जीवन में समय की बचत होने लगी है। यात्रा, लेखन कार्य और अन्य क्षेत्रों में समय बचने लगा है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। वहीं आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब प्रकृति, पशु पक्षी सब में समय की नियमितता है, तो हम तो मनुष्य हैं। अतः आज से ही समय का सदुपयोग करें, यही सफलता की कुंजी है। सफलता का वास्तविक रहस्य समय के सदुपयोग में निहित है।
0: अभी आप सुन रहे थे कुछ अनमोल विचार आज के चिंतन में। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी खरपतवार मोथा का प्रभावी नियंत्रण, इस विषय पर।
2: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करांगा खरपतवार मोथा जी। अपनी फसल का लेना खतरनाक छे, एक कई नुकसान छे, ना को नियंत्रण किना तरीका से करना चाहिए एक बारा में। सबसे पहला तो मोथा जी घास छे एको काई रहे कि सभी फसल ना का बीच बीच में से उगी आवज भूमिगत कंद एको रहे न साथ में एको राइजोम जी छे नी ओका माध्यम से एक ही तेजी से फैले जी न

0: मोथा खरपतवार जी छे वो अपने फसल का लेना नुकसानदायक क्यों छे? क्योंकि फसल का साथ साथ पानी, पोषक तत्व, प्रकाश न स्थान सब न का साथ साथ ई प्रतिस्पर्धा करज न कभी कभी यही हो जाए कि फसल से ज्यादा तेजी से वृद्धि करी न ऊपर निकल जाए। अभी हमारा क्षेत्र में मक्का का बीज में, गन्ना का बीज में, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, सब्जी या बागवानी जो भी फसल हमारा किसान भाई बहन ने लगाई रखी हुए उसका बीच में ये मोथा जी छे गंभीर समस्या खड़ी करज। भूमिगत कंद का कारण ये बार बार उगी आवज एकाले न हमारा किसान भाई बहन जब वहाँ ऊपर से काटी देज या उसकी निंदाई करी देज तब तो भी पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होते है। कदी मोथा को अधिक प्रकोप हो जाए तो फसल की वृद्धि रुकी सकज, उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकज न सबसे अंत में अपन देखा है कि उपज में बहुत ज्यादा कमी आई सकज। तो हमारा किसान भाई बहन ये समझने की आवश्यकता छे कि केवल एक बार की निंदाई या एक बार की दवा से एको पूर्ण नियंत्रण नहीं होने को एकाले न समेकित खरपतवार प्रबंधन अपनाउनु बहुत आवश्यक छे। सबसे पहला तो किसान भाई बहन गर्मी का समय गहरी जुताई करनु पड़ेगा जेका से कि एका कंद जी छे ऊपर आई जाए जमीन पर न फिर धूप में सूखी ना खत्म हो जाए। फसल चक्र अपनाउनु भी एक अच्छी सलाह छे जहाँ संभव हो घनी फसल न लेवा ताकि मोथा का बढ़ने की जगह कम मिले। हमारा किसान भाई बहन ख खेत की मेड़ न उका आसपास का क्षेत्र न ख साफ सुथरा रखने की सलाह हमारा विशेषज्ञ हमेशा देज न हम भी अख दोहराई राज कि अपना खेत की मेड़ ख साफ सुथरी रखो। न मोथा को नियंत्रण करनु हो तो प्रारंभिक अवस्था में एक ही निंदाई गुड़ाई बहुत आवश्यक छे। केवल पौधा का ऊपर से काटना से काम नहीं चलना को क्योंकि एका कंद जी छे वो मिट्टी का अंदर रह न बाद में फिर ओका मसी वृद्धि हुई जाए एकाले न संक्रमण कम हो तो पौधा का कंद सहित निकालनु नौख नष्ट करनु आवश्यक छे। कभी एको प्रकोप हो जाए तो खड़ी फसल में कहाँ की दवा उपयोग करनु चाहिए, ई फसल आपने कहाँ की लगाई, किना क्षेत्र में आप रही राज, आपकी खरपतवार की अवस्था काई छे ओका आधार पर निर्भर होज। एकाले न केवल फसल का अनुसार अनुशंसित मात्राज उपयोग करो न जी अनुशंसित शाकनाशी को प्रयोग बताए वो खज करो। दवा को चयन न की मात्रा हमेशा आपने जी फसल अपना खेत में लगाई उन्हीं फसल का लेना जी स्वीकृत अनुशंसा छे वो अपनाउनु आवश्यक छे। तो किसान भाई बहन ख मोथा से पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो ओका एकीकृत रणनीति अपनाउनु पड़ेगा। मतलब गहरी जुताई करा, समय पर निंदाई करा, फसल का उपयुक्त शाकनाशी को संयोजन करा, लगातार 2-3 मौसम तक नियंत्रण का उपाय यदि अपना किसान भाई अपनावेगा तो मोथा की संख्या में वो कमी लाई सकज। न सबसे बड़ी बात हमारा किसान भाई बहन का ये मालूम होनी चाहिए कि उन्हें कहाँ की फसल लगाई, सोयाबीन लगाई, गेहूँ लगाया, मक्का लगाई कि गन्ना छे, कपास छे, न उसके बाद उनका खरपतवार कितना बड़ा होगा, कितना दिन का होगा, उनको खेत जी छे वो किना क्षेत्र में छे, ये सब बात न का आधार पर अनुशंसित शाकनाशी को सही मात्रा में सही समय पर छिड़काव न सावधानी का साथ छिड़काव एको उपाय हो सकज। आज हमारा किसान भाई बहन से योज कहनु छे।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी दी गई खरपतवार मोथा का प्रभावी नियंत्रण इस विषय पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6:40 होने वाले हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको देंगे जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, कार्यक्रम विवरण में। लेकिन पहले सुनिए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1

0: 800-420-2233 पर कॉल करें।
1: अब सुनिए श्रोताओं, आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में। सवेरे 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की। 7:35 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का समय रहेगा 9:15 का, कलाकार होंगी छाया पगारे। और साथ ही 9:15 पर सुगम संगीत में सपना भाटे को सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत में 9:30 सुनिएगा शिवानंद पाटिल का गायन राग सालग वराली तोड़ी। 10:05 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम, आपके पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम MH होटलाइन। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताग्रम से जुड़ना चाहें तो हमारे फोन नंबर नोट करें 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731। समय याद रखिए 10:05 से 11:00 तक आपका पसंदीदा कार्यक्रम MH होटलाइन। महिला साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। आरंभिक चर्चा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माँ की भूमिका, योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मी टाइम क्रम में हस्तशिल्प और पेंटिंग्स के माध्यम से महिलाएं बने आत्मनिर्भर, इस विषय पर जानकारी होगी। साथ ही ये जानना भी जरूरी है, इस क्रम में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर सेल पर जानकारी दी जाएगी और किचन टिप्स भी दिए जाएंगे। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा 5:00। आज के क्रम में साप्ताहिक विज्ञान और खेल की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। 5:45 पर फिल्म संगीत सुनवाएंगे। 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 सुनिएगा सुगम संगीत, कलाकार होंगी शोभा पाठक। 6:45 पर लोक संगीत में समूह स्वरों में लोकगीत सुनवाएंगे। खेती गृहस्थी का समय रहेगा हमेशा की तरह 7:20 का। 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगी। 8:15 पर सुर्खियों में आकाशवाणी भोपाल से रिले होगा। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:15 पर चित्रगीत और 9:30 श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 से 10:30 तक आप सुन सकते हैं। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का गाया राग यमन कल्याण सुनवाएंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में। श्रोताओं, साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz पर आज शुक्रवार दिनांक 31 जुलाई को 11:32 से 12:00 तक प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकते हैं हमारे फोन नंबर 2710223 और 2710224 पर। साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियों पर विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह रघुवंशी स्टेट साइबर सेल इंदौर से आप जानकारी ले सकते हैं। ये कार्यक्रम आप हमारे विविध भारती इंदौर चैनल FM 101.6 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, ये भी जानकारी आप ध्यान रखें। 6:55 होने वाले हैं। अब वक्त है समाचारों का।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् पारितम्। राज्यसभया एतत् विधेयकम् ह्यः पारितम्, लोकसभया तु बुधवासरे एव तत् अनुमोदितमासीत्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति। एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः दशवर्षीयः कारावास

0: दशकोटि रूप्यका पर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्र निस्तारणं सुनिश्चितीकर्तुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेष द्रुत न्यायालयानां स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता। तथैव आरक्षिस्थानके सूचना पंजीकरण दिनांकाद् द्विमासाभ्यन्तरे अपराधानाम् अन्वेषणं भवेत्, अभियोगपत्र प्रस्तुतेः त्रिमासाभ्यन्तरे च निर्णयो भवेत्। पूर्वं सदने विधेयकं निवेद्य डॉ जितेन्द्र सिंहः अवदत् यत् एतत् विधेयकं राष्ट्रस्य विद्यार्थिनां युवजनानां च हितसंरक्षणे प्रशासनस्य दृढप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादयति। अनन्तरं सदनम् अद्य प्रातः एकादशवादनपर्यन्तं स्थगितम्। संसदा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकमपि पारितम्। लोकसभया ह्यः, राज्यसभया तु बुधवासरे एव एतत् अनुमोदितमासीत्। अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवदेव वैधानिक संरक्षणं प्रदास्यते, अथ राष्ट्रगीतस्य अपमानः च दण्डनीयः अपराधः भविष्यति। एतेषाम् अपराधानां कृते अधिकतमः त्रिवर्षीयः कारावासः, अर्थदण्डः उत वा उभयमपि विहितं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्थायाः निर्माणार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यरतमस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगतेषु दशकेषु केन्द्रीय राज्य प्रशासनाभ्यां प्रश्नपत्राणां गोप्यता भंगस्य समस्या निरन्तरं अनुभूयते। अनेन च विद्यार्थिनां भविष्यं संकटापन्नमभवत्। सः अवदत् यत् एतत् सर्वं मनसि निधाय सम्पूर्णे देशे केन्द्रे राज्येषु च शिक्षाव्यवस्थायाः परीक्षाव्यवस्थायाश्च परिष्कारः अत्यावश्यकः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः मन्त्रिमण्डलीय सुरक्षा समित्युपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन्नुपवेशने पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तत्सम्बद्धस्थितेः तथा विभिन्नमन्त्रालयैः विभागैश्च कृतानाम् उपायानां समीक्षा कृता। उपवेशनम् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री घटनाक्रमाणां नियमितानुवीक्षणाय नागरिकानां हितसंरक्षणसम्बद्धानाम् उपायानां शीघ्रकार्यान्वयनाय च एकीकृतसमन्विततन्त्रस्य निर्माणम् आहूतवान्। उच्चतम न्यायालयेन राष्ट्र राजधान्यां सद्य एव जातेषु छात्र विरोध प्रदर्शनेषु पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगेन आहतानां जनानां समुचित चिकित्सायै दिल्ली प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य अध्यक्षतायां त्रि न्यायाधीश पीठं जंतर मंतर इत्येतस्मिन् स्थले दिल्ल्याः अन्येषु स्थानेषु च प्रदर्शनरत छात्रेषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोग सम्बद्धां याचिकां शृणोति स्म। श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलकः लवप्रीत सिंहः पुरुषाणां दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदकै पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और

0: दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और पिछली सरकारों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लुकतुब दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाले लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जम्पर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सिल्वा प्रभु थिरुमानन ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: पर सुनेंगे

0: कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है, अरे शादी में चलना है ना।
1: अरे मैं नहीं जाता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz पर आज सवेरे 11:32 से 12 बजे तक प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। श्रोता आज इस कार्यक्रम में अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो समय याद रखिएगा, आज 31 जुलाई 2026 सवेरे 11:32 से 12 बजे तक। आप भी अगर साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां जानना चाहते हैं और विशेषज्ञ से बात करना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ होंगे नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। आप हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं, साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। समय श्रोताओं याद रखिएगा, सवेरे 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती इंदौर पर, और श्रोताओं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सवेरे 10:05 से 11 बजे तक आप सुन सकते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन। तो दोनों कार्यक्रमों का समय याद रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, सवेरे के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। परीक्षा कानून संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ में स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण का करेंगे वितरण। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद धार भोशाला परिसर से लगी दरगाह की जमीन पर आज होगी जुमे की नमाज। और प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय, आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के संसद से पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक माफिया और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नए कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधान और कड़े किए गए हैं। पेपर लीक जैसे मामलों की जांच तय समय सीमा में होगी और फास्ट ट्रैक अदालतों में जल्द सुनवाई की जाएगी। ये विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूहों का क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे प्रदेश के स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। वे करीब 284 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया जाएगा और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद धार के ऐतिहासिक भोशाला परिसर से लगी दरगाह की जमीन पर आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। अदालत ने राज्य सरकार को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने तय स्थान का निरीक्षण किया और सफाई सहित जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर में देश का पहला ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। नई दिल्ली में इस योजना के लिए केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच कल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में दूर संचार उपकरणों का निर्माण होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों से हुई चर्चा में करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना भारत को दूर संचार उपकरणों के वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: ग्वालियर सेक्टर हमारा बहुत संभावना का सेक्टर, जब भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के एमओयू करते हुए हमारे टेलीकॉम सेक्टर में अपनी इंडस्ट्रियों को आकर्षित कर रही है। इसमें भारत सरकार की जो अपनी ब्रांड है उस पॉलिसियों के अंतर्गत हमारे राज्य की तरफ से भी बड़े पैमाने पर रोजगार पर कामों को बढ़ावा देने की दृष्टि से सभी प्रकार की पॉलिसियों के बलबूते पर हमने एक आकर्षक पैकेज बनाया है, जिसके आधार पर जो माननीय सिंधिया जी ने बताया 3,500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आज कंपनी ने अनाउंस किया है और आज तो एमओयू हुआ है। हमारे लिए डबल एक तरह से निवेश भी और रोजगार ट्रिपल मिला है।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में मतदान संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार कुल 71.44% मतदान दर्ज किया गया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली, जिसमें युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता भी शामिल रहे। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और धार से सांसद सावित्री ठाकुर ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राष्ट्रपति को अक्टूबर में धार में आयोजित होने वाले वीरांगना रानी दुर्गावती जन्मोत्सव और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान रानी दुर्गावती के शौर्य, राष्ट्रभक्ति और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन की रूपरेखा से भी राष्ट्रपति को अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति की

समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नए उद्योगों में स्थानीय किसानों और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार फसल उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने पेप्सिको इंडिया की खाद्य प्रसंस्करण इकाई और निर्माणाधीन वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। उज्जैन में श्रावण माह के दौरान महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे के अनुसार प्रतिदिन 80,000 से अधिक यात्रियों के स्टेशन पहुंचने की संभावना है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर, टिकट जांच कर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जरूरत के अनुसार विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा और उज्जैन स्टेशन पर एक अतिरिक्त इमरजेंसी ट्रेन भी तैयार रखी गई है। स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा मिल सके। प्रदेश में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बालाघाट पुलिस की पहल को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अभियान के दौरान जिले के 1,204 स्कूलों के करीब 1,25,000 विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति की शपथ ली। वहीं 5,00,000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अभियान में भागीदारी की। इस उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बालाघाट पुलिस को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। भोपाल में कल से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन करीब 2,000 यात्रियों ने इन बसों से सफर किया। फिलहाल शहर के 3 मार्गों पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों का किराया सामान्य सिटी बसों के बराबर रखा गया है, जो 7 से 40 रुपए तक है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में और बसें शुरू की जाएंगी। नई बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण अगले 2 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 2 और पदक अपने नाम किए हैं। भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, वहीं सीमा कालीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के भानपुरा के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में टीवी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम के पवारखेड़ा स्थित आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र में कल आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के लिए एड्स पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान 16 दिनों तक चले जन जागरूकता अभियान का कल आगरमालवा में समापन हो गया। जबलपुर के कटंगी के सम्मति विद्या मंदिर में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। अशोकनगर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखेंगे। नर्मदापुरम में सावन की शुरूआत में ही झमाझम बारिश ने इटारसी और आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। वहीं खंडवा जिले में कल दोपहर बाद से लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज रखने के निर्देश दिए गए हैं। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत संचालित कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल ई दक्ष केंद्र इंदौर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र,
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की।
3: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।

परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, कल तक जो शहर गुरु भक्ति के भाव में डूबा हुआ था, जहां आश्रमों और मंदिरों में गुरु वंदना की पावन धारा बह रही थी, उस गुरु पूर्णिमा की मिठास अभी भी हम सभी की सांसों में घुली हुई है। गुरु जो जीवन के अंधेरे में ज्ञान का दीप जलाते हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इंदौर शहर ने बीते दिन गुरु पादुका पूजन, भव्य शोभा यात्राओं और प्रसादी वितरण के साथ जिस श्रद्धा से गुरुओं का नमन किया, उसने हर दिल को एक असीम शांति से भर दिया है। गुरु की कृपा का यह भाव अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि कुदरत ने अपनी झोली में एक और खूबसूरत तोहफा हमारे सामने खोल दिया है। आषाढ़ पूर्णिमा की विदा लेते ही रिमझिम फुहारों के साथ आगाज हो चुका है भक्ति, साधना और आनंद के महीने पवित्र श्रावण मास का। आसमान में छाए सांवले मेघ, हरियाली से महकती सड़कें, हवाओं में घुलती हुई सौंधी खुशबू, ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद गंगा जल लेकर महादेव के स्वागत में खड़ी हो। गुरु पूर्णिमा से जो आध्यात्मिक लौ जली थी, अब वही लौ बम बम भोले के जयकारों के साथ अखंड ज्योति बनने जा रही है। शहर के ऐतिहासिक इंद्रेश्वर महादेव से लेकर देव गुराड़िया और गुटकेश्वर मंदिर तक हर शिवालय सज चुका है। गलियों से कांवड़ियों के जत्थे गुजरने लगे हैं, हाथों में जल और जुबां पर केवल एक ही नाम, हर हर महादेव। श्रावण सिर्फ एक महीना नहीं दोस्तों, यह मौका है खुद को फिर से ईश्वर से जोड़ने का, प्रकृति को महसूस करने का और मन के सारे तनाव को भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देने का। तो आइए, गुरु से मिले ज्ञान को अपने दिल में संजोकर इस सावन में भक्ति और प्रेम की राह पर एक कदम और बढ़ाएं, प्रकृति को सहेजें और इस मानसून अपने घर के आंगन में एक पौधा जरूर लगाएं। यही तो महादेव की सच्ची पूजा है।

श्रोताओं, संगीत सिर्फ कानों से सुनने की चीज नहीं है, यह तो वो रूहानी एहसास है जो सीधे आत्मा को छूता है। और जब बात आत्मा को छूने वाली आवाज की हो तो दिल खुद ब खुद उस नाम को पुकार उठता है, मोहम्मद रफी। रफी साहब केवल एक गायक नहीं थे, वे ईश्वर द्वारा बख्शी गई एक ऐसी अलौकिक आवाज थे जिसने इंसान के हर एहसास को सुर दे दिए।

31 जुलाई की वो शाम भले ही उन्हें हमसे दूर ले गई, लेकिन सच तो यह है कि जो आवाज रूह में बस जाए उसे मौत भी खामोश नहीं कर सकती।

रफी साहब के बचपन की वह कहानी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती, जब वे गांव की गलियों में एक फकीर के पीछे पीछे गाया करते थे। शायद उस फकीर की सुरीली फरियाद में खुदा की वह दुआ शामिल थी जिसने एक साधारण बालक भीखू को संगीत का शहंशाह बना दिया। उनकी आवाज में जो सच्चाई, जो रूहानियत थी, वह किसी रियाज से ज्यादा उनके पवित्र मन की देन थी। वे जब गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई भक्त मंदिर में दीप जला रहा हो या कोई सूफी खानकाह में इबादत कर रहा हो।

रफी साहब के गीतों में केवल सुर और ताल नहीं थे, उनमें भावनाओं की आत्मा धड़कती थी। वे जिसके लिए भी गाते, अपनी आत्मा उस किरदार में उड़ेल देते थे। रफी साहब की आवाज हर चेहरे का आईना बन जाती थी।

जितनी बुलंदी उनकी गायकी में थी उतनी ही गहराई उनके स्वभाव की थी। दुनिया भर में नाम और शोहरत कमाने के बाद भी रफी साहब के भीतर का इंसान कभी नहीं बदला। सफेद लिबास, चेहरे पर हल्की सी मासूम मुस्कान, वे सादगी की मिसाल थे। नए संगीतकारों की मदद करना, बिना पैसों की परवाह किए गा देना और अपनी कामयाबी का सारा श्रेय ईश्वर को देना, यही उनकी असली पहचान थी। वे जानते थे कि सुर खुदा की देन है, इसलिए उन्होंने कभी अपनी आवाज पर गुरूर नहीं किया।

31 जुलाई 1980 को जब मुंबई के आसमान से झमाझम बारिश हो रही थी, तब हजारों लाखों आंखें अपने इस अजीज फनकार की विदाई पर रो रही थी। ऐसा लगा मानो संगीत की दुनिया से उसकी रूह ही छीन ली गई हो। आज भले ही दशक बीत चुके हैं, लेकिन जब भी रात के सन्नाटे में रफी साहब की आवाज गूंजती है तो आंखें अपने आप नम हो जाती है।

वे हर उस दिल में जिंदा है जो मोहब्बत करना जानता है, वे हर उस आँख में जिंदा है जो किसी की याद में नम होती है, और वे संगीत के हर उस सुर में जिंदा है जो ईश्वर की इबादत तक जाता है। आवाज का जादूगर चला गया पर सुरों का कारवा छोड़ गया। सुरों के उस महान संत मोहम्मद रफी साहब को कोटि कोटि नमन।

0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा इंदौर परिक्रमा।
1: अभी आप सुन रहे थे इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता मुकाम सिंह चौहान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से जानती है, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता और परास की अधिकता के लिए आपने अपने समकालीन गायकों के बीच में अपनी पहचान को कायम किया था। आपको सहनशाह तरन्नुम भी कहा जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। फिल्म इंडस्ट्री के ऐसी महान हस्ती के साथ साथ आज एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री मुमताज का जन्मदिन भी है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं वो गीत जो गाया मोहम्मद रफ़ी साहब।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: श्रोताओं, लीजेंड सिंगर मोहम्मद रफी ने भारतीय सिनेमा को हजारों यादगार गीत दिए। उनका जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्मे रफी साहब ने लाहौर से संगीत की शिक्षा ली। बॉलीवुड के कई नामी एक्टर एक्ट्रेस उनकी आवाज के दीवाने थे। बॉलीवुड की अपने जमाने की एक एक्ट्रेस तो उन्हें 10-10 बार आई लव यू बोला करती थी। जब मोहम्मद साहब रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो उनसे सिर्फ एक बार प्यार देखने की, प्यार पाने की गुजारिश करती थी। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं थी बल्कि मुमताज थी, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ दर्जनों हिट फिल्में दी। आइए उन्हीं पर फिल्माया हुआ, यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ और अभिनेत्री मुमताज पर फिल्माया हुआ ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे। तो आज भी ये गीत कई वैवाहिक समारोहों में आपको सुनने को मिलेगा। आइए सुनते हैं वही गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अभिनेत्री मुमताज ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि वे मोहम्मद रफी साहब को बहुत तंग करती थी। जब वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया करते थे तो रिकॉर्डिंग रूम के बाहर जाकर बैठ जाती थी। उस वक्त सिंगर माइक के साथ अलग खड़े होते थे, फिर उन्हें देखकर कहा करती थी कि रफी साहब जरा इधर देखिए, और रफी साहब को बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया करती थी। लेकिन श्रोताओं, अपने समय की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक थी मुमताज, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। दो रास्ते, बंधन, आदमी और इंसान, सच्चा झूठा, खिलौना, तेरे मेरे सपने, ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया था और इन फिल्मों के गाने भी बहुत ही सुपरहिट हुए थे। मोहम्मद रफी साहब ने इनकी फिल्मों में से 4 ऐसे गाने गाए थे जो कि अमर हो गए थे। इन गानों में से दो रास्ते फिल्म का ये गीत, छुप गए सारे नज़ारे, ये तो आप भुला ही नहीं सकते, है ना। और इस फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और इस गीत को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने गाया था। इसी तरह से दो रास्ते फिल्म का एक और गाना बहुत ही सुपरहिट और पॉपुलर था, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने आवाज़ दी थी। इस गाने के बोल थे, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें। आज के इस कार्यक्रम में हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही इस गीत के साथ की थी। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ऐसे कई गीत हैं जिन्होंने मुमताज की फिल्मों को हिट बनाया था। मुमताज और राजेश खन्ना की एक और फिल्म थी सच्चा झूठा, जिसका एक बहुत ही पॉपुलर गाना है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, ये दिल के तार छेड़ देता है ये गीत। और एक फिल्म और थी, 1971 की फिल्म थी खिलौना। चंदर वोहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था और इस फिल्म का एक गाना था, खुश रहे तू सदा जहां भी रहे, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। मुमताज ने

दोस्तों, आज फिल्म इंडस्ट्री के महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है और अभिनेत्री मुमताज़ का जन्मदिन है। हमने इन दोनों के विषय में कुछ बातें आपसे करने की कोशिश की आज के इस कार्यक्रम सुनहरे पल में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दें, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 8 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोष

0: दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई।

0: वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
1: The reality of life is that everything has a beginning.
2: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी। अमर उजाला की सुर्खी है, अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, पार्लियामेंट पासेस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर पेपर लीक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम्स पैसेज ऑफ द बिल, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announced maritime defense alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovpreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kalirammana bags bronze medal in discus throw. And now the news in detail.

बिठाने जाते थे। सच कहें तो आपको आधुनिक भारतीय संगीत का तानसेन कहा जाता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, रफी साहब ने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों के लिए और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ कुछ विदेशी भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए। हालांकि उर्दू और पंजाबी में उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 7000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जिसमें कोंकणी, असमिया, भोजपुरी, ओडिया, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मगही, मैथिली और कई अन्य भारतीय भाषाएं भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कुछ विदेशी भाषाओं में भी गाया है, जिनमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, सिहली, मॉरिशस, क्रियोल और डच शामिल है। फिल्म संगीत में और भारतीय इंडस्ट्री में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें भारत में 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। 2001 में हीरो होंडा और स्टार डस्ट पत्रिका द्वारा मोहम्मद रफी साहब को सहस्त्रादी का सर्वश्रेष्ठ गायक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और CNN IBN पॉल में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ आवाज के लिए चुना गया था।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: रफ़ी साहब सही मायनों में एक संपूर्ण गायक थे। उनके तर्कश में शास्त्रीय संगीत, रोमांटिक गाने, दुखी गाने, खुशी वाले गीत, देशभक्ति गीत, रॉक एंड रोल, डिस्को नंबर्स, भजन, शब्द, कव्वाली, नातिया, कलाम, क्या क्या तीर नहीं थे। हालांकि रफ़ी साहब का टैलेंट किसी बड़े स्टेज पर पहली बार सन 1937 में तब दुनिया के सामने आया जब अचानक बिजली चले जाने के बाद उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में परफॉर्म किया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। यहाँ उनका गाना तब के मशहूर गायक KL सहगल ने सुना और कहा कि रफ़ी आगे चलकर बहुत बड़े गायक बनेंगे, और अंततः उनकी बात सत्य साबित हुई और आज भी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और प्रतिभावान गायकों में सबसे ऊपर रफ़ी साहब का नाम आता है।

दोस्तों, रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसी तासीर थी कि वह सीधे दिल में उतर जाती थी। दर्द हो या मस्ती, हर भाव उनकी आवाज़ में जीवंत उठता था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि भावनाओं का वह सागर था जिसमें हर दिल अपनी खामोशी का किनारा ढूंढ लेता है। वे चाहे शास्त्रीय बंदिश हो या उदास गज़ल, रूहानी भजन हो या मस्ती भरा तराना, हर रंग में पूरी तरह ढल जाते थे। दोस्तों, रफ़ी साहब संगीत को इबादत समझते थे। स्टूडियो में प्रवेश करने के पहले हमेशा अपनी चप्पलें बाहर उतारते थे, जैसे किसी मंदिर या इबादतगाह में हम जा रहे हो। संगीत उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि सच्ची साधना थी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लान

0: को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, रफी साहब एक बेहद रूढ़िवादी परिवार में पले बड़े, जहां संगीत और गायन को अच्छा नहीं माना जाता था। इसके बावजूद उन्हें गायन में गहरी रुचि थी और वे अक्सर लाहौर के अपने गृहनगर की गलियों में घूमने वाले एक स्थानीय फकीर के गायन की नकल किया करते थे। नौशाद द्वारा सुरबत गीत फिल्म अनमोल घड़ी के गीत के साथ रफ़ी को पहली बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। उसके बाद शहीद, मेला और दुलारी में भी उनके गाने बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद फिल्म बेजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे, तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से इस गीत को गवाने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने तलत महमूद को धूम्रपान करते देख कर अपना मन बदल लिया और रफ़ी से गाने को कहा। बेजू बावरा के गानों ने रफ़ी को मुख्य धारा के गायक के रूप में स्थापित किया और उसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने संगीत निर्देशन में कई गीत गाने के मौके दिए।

अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से मोहम्मद रफ़ी ने उस दौर के सभी संगीतकारों को अपनी आवाज़ का दीवाना बनाया था। सचिन देव बर्मन साहब हो, ओपी नैयर हो, संगीतकार रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील

चौधरी जैसे कई संगीतकारों की आप पहली पसंद बन चुके थे। दिलीप कुमार, भारत भूषण और देवानंद जैसे कलाकारों के साथ साथ आपने शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जैसे कई कलाकारों के साथ साथ शम्मी कपूर, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के लिए भी आपने गीत गाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी कलाकारों के लिए रफ़ी की आवाज़ पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफ़ी साहब की आवाज़ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हर गाने में रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज़ हमेशा रफ़ी की ही रही।

श्रोताओं, रफ़ी साहब का कंठ सुरों का वह पवित्र मंदिर था जहां हर राग हाथ जोड़कर प्रवेश करता था। उनकी आवाज़ में कभी हिमालय की बर्फ सी शांति होती थी तो कभी सावन की पहली बारिश की खुशबू। उन्होंने संगीत के कैनवास पर अपनी आवाज़ से ऐसे रंग बिखेरे हैं जो वक्त की हर आंधी के बाद भी और गहरे होते जा रहे हैं। वह कल भी संगीत का सूरज थे, वह आज भी सुरों के चांद हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर एक बार फिर उन्हें नमन और सादर श्रद्धांजलि।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको लोक संगीत सुनवाने का। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं छाया पगारे और साथियों की आवाज़ में गाई ये मालवी रचना। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना के साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं छाया पगारे और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। आइए इन्हीं की आवाज में सुनते हैं कार्यक्रम की अगली रचना।

लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कलाकार है छाया पगारे और साथी। श्रोताओं, शादियों का मौसम थोड़ा थम चुका है, लेकिन लोक गीतों में और लोक संस्कृति में बन्ना बन्नी का महत्व आज भी उतना ही है और हमेशा रहेगा। आइए बन्ना बन्नी पर केंद्रित एक ऐसी ही लोक रचना सुनिए लोक संगीत के इस कार्यक्रम में।

ये विवाह गीत आप सुन रहे थे छाया पगारे और साथियों की आवाज़ में। कार्यक्रम था लोक संगीत का। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सपना भाटे के गाए गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली रचना, सपनों में आना, नयनों की सुनी नगरिया बसाना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सपना भाटे के गाए गीत। आइए लीजिए सुनिए बी आर नागर की लिखी ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सपना भाटे के गाए गीत और भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शिवानंद पाटिल का गाया राग सालक वराली तोड़ी। तबले पर संगत उदय राज की है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे शिवानंद पाटिल का गाया राग सालग वराली तोड़ी। तबले पर संगत उदय राज की थी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले होगी, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। रतलाम जिले में गुरु पूर्णिमा के साथ चतुर्मास की शुरुआत हो गई है। जिले में गुरु पूर्णिमा पर कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने गुरुजनों का सम्मान किया। चतुर्मास के दौरान जैन संत और साधुयां विभिन्न स्थानों पर प्रवचन देंगे। वहीं सावन महीने में शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई कांवड़ यात्री पहले सोमवार को महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाएंगे। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के कर्मचारी अमित को सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा के लिए मैन ऑफ द मंथ संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमित ने उज्जैन संत हिरदाराम नगर रेलखंड पर संदिग्ध विस्फोटक सामग्री देखकर तुरंत अधिकारियों को सूचना दी थी। रतलाम जिले के बिरमावल और रावटी में करीब 68 करोड़ रुपए की लागत से बने दो आधुनिक सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह और मंत्री चैतन्य कश्यप मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने विद्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बनाने की भी घोषणा की। सांदीपनी विद्यालयों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण का विशेष अभियान चलाया गया। बिरमावल में सिकल सेल हीमोग्लोबिन सहित कई जांच की गई। वहीं बड़ावदा विद्यालय में 588 विद्यार्थियों की आंखों की जांच हुई, जिनमें 70 बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्या मिली। सभी बच्चों को जरूरी उपचार और सलाह दी गई। जावरा क्षेत्र में दो प्रमुख सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए 56 करोड़ 50 लाख रूपये की मंजूरी मिली है। इन सड़कों से ग्रामीण इलाकों की आवाजाही बेहतर होगी। वहीं लेबड़ नयागांव फोरलेन हाईवे पर दुर्घटना कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट सुधारने का काम भी किया जाएगा। जावरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और सुधार कार्यों के अनुपूरक बजट में 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से भीमाखेड़ी फाटक चौराहा और अर्निया फंदे पर सड़क चौड़ीकरण, विद्युत व्यवस्था और दुर्घटना संभावित स्थानों में सुधार का काम किया जाएगा। राज्य सरकार ने जावरा क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए पिछले 5 वर्षों में 80 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। डोडर और सुजापुर में बालिका छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके अलावा नए स्कूल, बालिका शौचालय, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल मैदान भी बनाए जाएंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत नई दिल्ली और उज्जैन की टीम ने रतलाम जिले का दौरा किया। टीम ने जिला और ब्लॉक स्तर पर आयरन दवाओं की उपलब्धता और अभियान की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की DVDMS रैंकिंग में मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है और ई औषधि ऐप के माध्यम से आयरन की उपलब्धता को और मजबूत किया जा रहा है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में 1 अगस्त को थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर बच्चों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था भी की जाएगी। शिविर में जेनेटिक काउंसलिंग, दिव्यांग प्रमाण पत्र और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। कलेक्टर मीशा सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत अधिक से अधिक कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गैर संचारी रोगों की जांच अभियान तेज करने को भी कहा। लापरवाही बरतने पर 2 ANM के निलंबन का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत रिंगनोद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 85 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। इस दौरान उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सलाह भी दी गई ताकि गर्भावस्था के दौरान बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके। रतलाम जिले में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत BPL परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु होने पर परिवार को 20,000 रूपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हितग्राही संबंधित जनपद पंचायत, नगर निकाय, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आयोजित प्रधानमंत्री आवास समाधान कैंप के पहले चरण में 525 लंबित आवेदनों का निराकरण किया गया और 5,688 आवासों की जियो टैगिंग पूरी हुई। पहले चरण की सफलता के बाद अब 27 से 31 जुलाई तक सभी जनपद पंचायतों में दूसरे चरण के कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां आवास, किश्त और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रतलाम में खेल और युवा कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश के पर्यटन विभाग की ओर से 7 अगस्त को रतलाम में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को प्रदेश की पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। रतलाम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका अपना और पसंदीदा कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो,
0: तो श्रोताओं एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपके साथ आपकी दोस्त, और बिल्कुल हम आपके पसंद के गीतों को सुनवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी अपने अपने फोन्स के साथ बिल्कुल तैयार होंगे। वैसे तो आकाशवाणी इंदौर का ये नंबर आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर नंबर आप सभी को बताना चाहूंगी। अगर हमारे श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। और दोस्तों हमेशा की तरह एक निवेदन, छोटा सा निवेदन आप सभी दोस्तों से, हम देखिए कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ना वो सभी लोगों तक पहुंचे, और जो भी श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं वो भी अपने फ़ोन कॉल्स हमें कर सकते हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा काम हमारे सभी श्रोताओं को करना है। जिन श्रोताओं के कॉल पिछले 15 दिनों में लग चुके हैं कृपया इस बार वो फ़ोन ना करें और नए श्रोताओं को फ़ोन पर बात करने का मौका दें, तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में बहुत सारी विविधता आएगी और आप सभी को भी कार्यक्रम सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो बहरहाल एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं और आइए देखते हैं कि आज हमारे पहले श्रोता इस कार्यक्रम में कौन है। हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। और अभी सावन चालू होगा तो सावन मास की मैं सभी श्रोताओं

0: सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं।
1: आपको भी सावन के पवित्र महीने की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और देखिए, ये जो माह होता है ना, वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है, महिलाओं के लिए, कार्य करने वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे रीति रिवाज अनुष्ठान श्रावण महीने में शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं भगवान जी, और आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी, हम खेती किसानी करते हैं और हम गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है साजन का घर, और गाने के बोले सावन आया बादल छाए, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
1: अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अभी सावन की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी बारिश भी आना शुरू हो गई है, हालांकि बहुत अच्छी बारिश अभी नहीं आई है। तो
0: परसों के दिन मेरे यहाँ तो अच्छी बारिश हुई, करीबन 1.5 इंच पानी की।
1: अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली इंदौर में अभी उतनी बारिश नहीं हुई है, अभी बहुत सारी बारिश हमें चाहिए, क्योंकि देखिए जल संकट हो जाएगा अगर प्रॉपर बारिश नहीं आई तो, है ना
0: दीदी? बारिश तो बहुत कम हुई है हमारे।
1: जी जी जी जी,
0: परसों के दिन फसल के लिए काफी फायदा होगा, अच्छी बारिश।
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है ये तो। चलिए, बारिश भी अच्छी हो गई आपके यहाँ पे, आप खुश हैं। तो चलिए, सावन का ये खूबसूरत गीत आपके लिए।
0: दीदी, मेरे साथ सुनेंगे प्रेम सिंह सिसोदिया जी और केसर सिंह राजपूत जी और मांगीलाल चंदेल जी, इन तीनों को डेलीकेट रहेगा जो लाइव सुने सभी को।
1: ओके, आपको और आपके दोस्तों को समर्पित करते हैं गीत। सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।
0: धन्यवाद दीदी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो, एम एच हुडलाइन कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, कोटा राजस्थान से भूपेंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं। कौन सा गीत सुनेंगे भूपेंद्र सिंह जी आज?
1: हरि ओ बेजू बावरा का हरिओम
0: अच्छा, बेजू
1: सर।
0: बावरा का गीत सुनेंगे। कौन सा
1: आज
0: गीत है?
1: रफी साहब की याद का दिन है।
0: हाँ, आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है और फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े गायक थे कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना?
1: अपन अपने पूर्वजों को तो फिर भी साल में एक बार याद करते होंगे। पीढ़ियों को तो हम रोज याद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली उन्होंने इतने गीत हमारी इस इंडस्ट्री को दिए हैं कि हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। अच्छा, कोटा में बारिश की क्या स्थिति है इस वक्त?
1: बारिश तो कमी है पर
0: अच्छा
1: मौसम थोड़ा कभी थोड़ी देर में सुहावना हो जाता है फिर वापस धूप निकल जाती
0: अच्छा मौसम सुहावना हो जाता है और धूप निकल आती
1: पर
0: है।
1: उमस उमस जोरदार है।
0: उमस जोरदार है। सही है, सही है, बिल्कुल।
1: बारिश हो नहीं है ढंग से। बारिश 10-5 मिनट होती है फिर धूप निकली जाती है।
0: ओके, बारिश हो जाती है। आप क्या करते हैं?
1: सीनियर सिटीजन हूँ मैडम।
0: अच्छा, सीनियर सिटीजन है। बारिश के गीतों का और रफी साहब के गीतों का आनंद उठा रहे हैं आप?
1: हाँ और गुरु पूर्णिमा भी निकली है उस संदर्भ
0: बिल्कुल,
1: में।
0: गुरु पूर्णिमा भी निकली है। तो चलिए, सारे ओकेजन्स को एक साथ समेटते हुए आपकी पसंद का एक गीत अब आपको सुनवाते
1: सावन
0: हैं।
1: के मेले की शुभकामनाएं सब श्रोताओं को आकाशवाणी इंदौर को।
0: जी, आपको भी
1: आपके
0: हमारी ओर से
1: प्रोग्राम
0: बहुत सारी
1: मैडम
0: शुभकामनाएं।
1: आपके प्रोग्राम सुने थे आज सवेरे बढ़िया
0: जी
1: लगे।
0: जी धन्यवाद धन्यवाद। चलिए सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: सुना दो। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: मखमली और मासूम आवाज की मल्लिका विजया जैन जी, नमस्ते। जी
0: नमस्कार नमस्कार, इतनी तारीफ में तो सुबह सुबह धन्य हो गई।
1: जी जी
0: चलिए आपको भी नमस्कार, और बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज सबसे पहले।
1: आज मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि है तो उन्हीं का गीत सुनूंगा।
0: बिल्कुल, बताइए कौन सा गीत है उनका।
1: शरारत फिल्म गीत है 1959 की।
0: हाँ हाँ,
1: जब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, कभी हंसा दिया कभी रुला दिया कभी।
0: वाह वाह वाह, क्या गीत आपने पसंद किया है। वैसे आपकी गीतों की फरमाइश बड़ी चॉइस बड़ी अच्छी है, बहुत ही यूनिक फरमाइश है आपकी।
1: जी, और ये गीत किशोर कुमार जी पे फिल्म आया, आवाज रफी साहब की। जी
0: अच्छा, अरे वाह, ये
1: जी
0: तो बिल्कुल नई बात है। हमारे श्रोताओं ने भी, हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे ये वाला जो प्रोग्राम, तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये सब जानकारी सुनकर। वैसे आप
1: जी जी जी
0: प्रोग्राम के में गीतों की बड़ी गहरी समझ रखते हैं ऐसा मुझे लगता है।
1: जी जी
0: तो पढ़ते भी हैं, मतलब ऐसे गीतों के बारे में पढ़ते रहते हैं क्या? कहाँ से आती है इतनी नॉलेज आपको?
1: जी पढ़ते रहते हैं और YouTube पे भी देखा करते
0: अच्छा,
1: हैं,
0: YouTube पर भी देखा करते हैं।
1: और
0: ओके
1: कुछ कुछ पिताजी से इनसे भी जानकारी मिलती रहती थी,
0: अच्छा। आपके
1: क्योंकि
0: पिताजी भी गीतों के शौकीन थे।
1: जी, लाउड स्पीकर था हमारे पास तो सारी रिकॉर्डें थी, ईपी थी, पत्थर की रिकॉर्ड थी, एलपी थी,
0: अच्छा।
1: और वो चाबी वाले बाजे भी थे। जी
0: अरे वाह, मतलब कितने सालों से सुन रहे हैं? आपके पिताजी भी सुनते थे और आप भी सुन रहे हो और आपके बच्चे भी सुनते हैं।
1: जी
0: अच्छा, मतलब 3 पीढ़ियों से आप रेडियो सुन रहे हैं।
1: जी,
0: क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: जी जैसे रफी साहब को आवाज से याद करते हैं, ऐसे हम भी आपको आवाज से ही याद करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका गीत मिल गया है मुझे तो सुनवा दें आपकी पसंद।
1: जी, जरूर।
0: चलिए धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: शुक्रिया।
0: चलिए बात कर, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन
1: हेलो।
0: कार्यक्रम।
1: हाँ
0: हाँ जी,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार नमस्कार।
1: मैं राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ,
0: हाँ
1: राजा राम
0: जी,
1: नगर
0: हाँ
1: देहात
0: जी,
1: से।
0: हाँ
1: गीत
0: जी राजू जी, बोलिए कौन सा गीत सुनेंगे सबसे पहले?
1: आज दीदी रफी साहब का सुनेंगे, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, अमर पिक्चर का गीत है ये,
0: अच्छा, अमर पिक्चर का गीत
1: या
0: है ये।
1: फिर अपना
0: एक मिनट रुकिए, एक
1: शायद।
0: मिनट, हम आपका गीत सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लाइन पे ही हो भी, तो
1: जी
0: देखते हैं आपका गीत अगर मिल जाता है तो बिल्कुल वही सुनवा देते हैं, है ना?
1: हाँ,
0: और
1: नहीं
0: राजू
1: नहीं
0: जी,
1: तो फिर
0: कैसी चल रही है
1: वहाँ
0: जिंदगी?
1: बढ़िया चल रहा है, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस है देवास में मेरा, और यहीं पर रेडियो सुन रहा हूँ, चल रहा है रेडियो।
0: जी। और
1: हाँ,
0: बारिश की क्या स्थिति है इस वक्त अभी?
1: बारिश अभी जोरदार गिर गई, अभी बारिश में ही फोन कर रहा हूँ मैं, ये
0: अच्छा,
1: सामने
0: बारिश में ही
1: वाली
0: फोन कर रहे हैं।
1: अब
0: भीगना पसंद है आपको?
1: हाँ, आधा घंटा हो गया, भीग तो नहीं रहा हूँ जैसा दुकान के बाहर बारिश हो रही है।
0: अच्छा, आपने गाने के बोल क्या बताए हैं?
1: ये इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, कहना है तुझे, अमर अमर फिल्म का गीत है, या फिर वरदान पिक्चर का, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ रंग
0: एक मिनट में देख लेती हूँ। इंसाफ का मंदिर है ये, अमर अमर फिल्म, और दूसरा
1: भगवान।
0: इंसाफ का एक सुहाग सिंदूर फिल्म का गीत है, ये सुनवा दूं मैं? अभी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ही है,
1: कौन सा?
0: आप सुनो, आज मेरी पसंद का गीत सुनिए आप,
1: जी,
0: ठीक है? आपकी पसंद मैं रोज पूरी करती हूँ, आज अब हमारी पसंद का गीत सुनिए, है ना? चलिए राजू जी, फोन करने के लिए धन्यवाद, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो, एमए छोटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहे हूँ।
0: शेख हैदर खान जी, नमस्कार। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मैडम, आज मोहम्मद रफी की 46वीं पुण्यतिथि है
0: हाँ जी,
1: और आज महान गायिका मुमताज का जन्मदिन है,
0: बिल्कुल।
1: तो उन्हीं की याद में
0: थोड़ा सा
1: शुरू
0: रेडियो रेडियो
1: करती
0: दूर कर
1: है।
0: दीजिए ना, रेडियो थोड़ा सा दूर कर दीजिए, पीछे से आवाज आ रही
1: मैडम,
0: है।
1: तो मैडम बंद है।
0: अच्छा, पीछे कुछ कुछ आवाजें आ रही
1: ये
0: है।
1: आवाज आ रही है थोड़ी सी,
0: हाँ जी,
1: फोन
0: हाँ
1: है
0: जी।
1: रोड पे।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। आज
1: उसके
0: इन दोनों
1: जन्म
0: का
1: का
0: जन्म,
1: सिलसिला
0: एक की
1: मैं बताना
0: पुण्यतिथि है
1: चाहता हूँ
0: और
1: कि
0: दूसरे
1: मैं
0: का
1: बनाती है।
0: जन्मदिन है।
1: हेलो,
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए। गीत गीत और फिल्म का नाम बताइए।
1: फिल्म खिलौना,
0: खिलौना। खिलौना का कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: ये टाइटल सॉन्ग है रफी साहब की। आज में जो संजय कुमार और मुमताज पे फिल्म आया गया गीत है,
0: हाँ।
1: और मेरे परिवार के लोग है, शकीला बानो है, शम्मी बानो है, मुस्कान है, मोहम्मद आरिश है, मोहम्मद नवाज है, और हमारे एक दोस्त है,
0: जी
1: ये मतलब बलवंत कुमार वर्मा।
0: ठीक है। चलिए, आपको,
1: हाँ, अरे
0: आपके परिवार को और आपके दोस्तों को, सभी को समर्पित करते हैं खिलौना फिल्म का ये गीत। ठीक है,
1: ओके ओके, थैंक यू, है ना।
0: थैंक यू। सुन सुन लीजिए।
1: ओके ओके।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैम, मैं एमपी विदिशा से शिवा लोहट आपका नेमी श्रोता बात कर रहा हूँ। मैम
0: अच्छा जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैम सिर्फ तुम मूवी सुनवा दी टाइटल।
0: अच्छा, सिर्फ तुमका टाइटल सॉन्ग सुनेंगे आप। अच्छा, क्या
1: जी मैम,
0: करते हैं वैसे आप?
1: मैम मैं एक्चुअली ब्लाइंड टू समाज सेवा कार्यों में लगा रहता हूँ,
0: अच्छा,
1: जैसे
0: समाज
1: गाने
0: सेवा
1: को
0: के कार्य में
1: सुनाना।
0: लगे रहते हैं। ओके, और गाने भी सुनना पसंद करते हैं आप, है ना?
1: जी बिल्कुल, और खास तौर से आपकी आकाशवाणी का प्रसारण बहुत बढ़िया होता है मैम।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप जैसे श्रोता हमें सुनते हैं, हमें बड़ी खुशी है। और चलिए जल्दी से आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, है ना?
1: जी धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ मैं।
0: सूर्य प्रताप यादव जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज रवि साहब की पुण्यतिथि है,
0: जी
1: तो उन्हीं को समर्पित एक गीत है। फिल्म का नाम है पगला कहीं का,
0: बहुत ही,
1: और
0: हाँ जी,
1: हाँ,
0: बोले बोले, आप
1: जाने
0: बोले।
1: के बोले तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। आप क्या करते हैं?
1: हम खेतीबाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, तो अभी बारिश कैसी है वहां पर?
1: बारिश अभी ज्यादा नहीं हुई है मैम, अभी बारिश का ही इंतजार है।
0: अच्छा, तो अभी
1: हाँ
0: खेतों में जो फसल बो चुके हैं वो मतलब बारिश की वजह से खराब होने की स्थिति तो नहीं है?
1: स्थिति तो है मैम, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर तो
0: अच्छा, बीज खराब हो जाएंगे।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि खूब अच्छी अच्छी बारिश आए और जिन लोगों ने भी खेतों में बुआई कर रखी है उनके बीज खूब फले फूले, है ना?
1: बिल्कुल
0: चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत तैयार है हमारे रेडियो सेट के लिए, तो सुनवा दें।
1: जी मैम, बिल्कुल, धन्यवाद।
0: चलिए, धन्यवाद।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी आप?
1: जी। मैं ठीक हूँ मैम। मैं श्रीपाल गोयल दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम।
0: श्रीपाल गोयल जी दिल्ली से बात कर रहे हैं आप। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे श्रीपाल जी आज?
1: मैम फिल्म दोस्त की मूवी का है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है।
0: क्या बात है, सच में ऐसा ही है आपके साथ?
1: जी बिल्कुल मैम, आकाश में ये काम तो
0: अच्छा,
1: है ही। हाँ
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली में बारिश कैसी है इस वक्त?
1: मैम, कई दिन पहले हुई थी, अभी तो धूप निकली हुई, 2 से 3 दिन निकली हुई है।
0: अच्छा, बारिश
1: बाकी
0: कम
1: तो
0: ही है
1: ठीक
0: मतलब
1: है।
0: वहां पे
1: हाँ
0: भी?
1: जी मैम, बहुत कम हुई थी बात तो।
0: अच्छा। तो मतलब पूरी भारत भर में ही बारिश कम है इस बार।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं।
0: सही बात है। नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ गलती हमारी भी है, हम लोगों ने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो प्रकृति भी हमसे रूठ रही है ना? बिल्कुल, तो ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए आज से ही संकल्प करेंगे कि कोई प्रकृति को सुधारने के लिए एक एक पेड़ हम लगाएं और उसकी देखभाल करें, ताकि आने वाले वर्षों में हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, है ना?
1: जी।
0: चलिए, आपका गीत भी मिल चुका है, सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ जी, धन्यवाद आपका।
0: ओके जी, धन्यवाद।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे
1: नमस्कार
0: हैं?
1: नमस्कार, मैं अनिल भंडारी सुदामा नगर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, अनिल भंडारी जी सुदामा नगर से बात कर रहे हैं आप। बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आज हम मम्मा रफी की पुण्यतिथि पर उनकी याद में फिल्म उड़न खटोला का गीत सुनाएंगे।
0: उड़न खटोला फिल्म का गीत सुनेंगे आप? अच्छा, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैं थोड़ा गा के बता दूँ, आपको मजा आएगा
0: जी
1: क्या?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: पहले हम यहाँ के हुए जन्म।

चलिए आपकी पसंद का गीत रेडियो सेट पर। सुनवा दें आपकी पसंद का गीत। चलिए

0: हेलो हेलो, एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, कौन बात कर रही हैं आप?
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर।
0: अच्छा हसीना जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मैडम, फिल्म का नाम है ये रांझा,
0: हाँ हाँ
1: और गाने के बोल हैं, तेरे को से मैं तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, आज दिल खो बैठा।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। खैर
1: ये और मोहम्मद रफी के बारे में तू थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ मैडम।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
1: जैसे पुराने सिंगर जितने भी गायक कलाकार हैं, उन सब तो मोहम्मद रफी क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, और क्योंकि किसी की भी दूसरों की मदद करते थे। एक एक घर मतलब डाक भेजते थे मैडम ये लोग,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो उनके घर फिर डाक बंद हो गई आना, तो उन्होंने पूछा कि हमारी डाक बंद हो गई, तो बोले मोहम्मद रफी दुनिया में नहीं रहे।
0: ओ हो, देखिए ये पता है सबसे बड़ी किसी भी इंसान की खासियत है कि वो इतने बड़े मतलब ओहदे पे है, इतना बड़ा उनका नाम है, फिर भी उनके जीवन में इतनी विनम्रता है। और हर इंसान को उनसे सीखना चाहिए कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, जीवन में
1: क्योंकि
0: विनम्रता और अहंकार ना हो, विनम्रता हो अहंकार ना हो, है ना?
1: उनके आज इसी

0: इतनी अच्छी रहती थी मैडम शुरू से आखिरी तक हमारी अच्छी रही क्योंकि उनको कभी घमंड नहीं आया।
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा कोई अच्छा गा लेगा तो अरे हमारे से अच्छा तो कोई भी नहीं है।
1: सही बात है सही बात है, सीखनी चाहिए। देखिए अगर अपन सीखेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और नहीं सीखेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे, है ना।
0: घमंड किसी चीज का भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए,
0: ना धन दौलत का होना चाहिए ना घर गृहस्थी का, किसी चीज का भी नहीं होना चाहिए।
1: सही बात है। आप
0: सुंदरता का घमंड होना चाहिए
1: जी। बिल्कुल आप उतारती हैं उनके गुणों को अपने जीवन में?
0: हमारे पास तो है ना मैडम सारे ही गुण।
1: अच्छा सारे ही गुण है आपके पास, बहुत बढ़िया।
0: रेडियो की शिक्षा मिली हम लोगों को और बिल्कुल ईमानदारी से ही काम करते ना, गलत करते ना गलत बर्दाश्त करते।
1: बिल्कुल अच्छी बात है, ये सारी खासियत हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए, नहीं है अगर या है तो उसको बढ़ाते रहना चाहिए, है ना। तो चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवा दें अब आपको।
0: जी शुक्रिया मैडम, सुनवा दीजिए।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए
0: लेटर जब शामिल करते हैं ना मैडम तो बहुत ज्यादा लेटर लेते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, मतलब सभी के लोगों के लेटर शामिल हो जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम तो यही कोशिश करते हैं कि जितने भी श्रोता हमारे कार्यक्रम में पत्र डाले उन सब के नाम शामिल हो और आप लोगों से ही हमारे इस आकाशवाणी की रौनक है ना।
0: मतलब महिलाओं में आप सबसे ज्यादा लेटर शामिल करते हैं।
1: धन्यवाद धन्यवाद हसीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका गीत सुनवा देती हूँ जल्दी से, है ना।

0: हेलो, एमए छोट लाइन।
1: नमस्कार सर जी। अनोखे
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सिंह जी सर जी,
0: अच्छा, अनोखी सिंह जी। अनोखी सिंह जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज शुक्रवार है और माँ संतोषी का सुनेंगे हम।
0: अच्छा ठीक है,
1: हाँ,
0: आप करते हैं शुक्रवार के दिन कुछ विशेष पूजा पाठ वगैरह करते हैं?
1: हमारी धर्म पत्नी उपास रखती है माँ संतोषी का।
0: अच्छा
1: हम परहेज रखते हैं, खटाई वगैरह नहीं खाते हैं।
0: अच्छा शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत होता है, इसलिए। कितने सालों से कर
1: हाँ,
0: रही हैं वो ये उपवास?
1: वो अभी हमारे साथ आई जब से तो कर ही रही है,
0: अच्छा
1: उसके
0: अच्छा
1: पहले भी कर रही है, वो तो क्या
0: अच्छा अच्छा
1: मतलब।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। चलिए, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, संतोषी माता की कृपा आप पर बनी रहे, है
1: और
0: ना?
1: सावन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तजनों को।
0: जी, आपको भी। चलिए सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: सुनवा दीजिए सर, तो अच्छा ही है।
0: चलिए बिल्कुल सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं खातेगांव से गोविंद तोलोदिया मां बात कर रहा हूँ।
0: हाँ गोविंद जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए।
1: हाँ, आज वो दिलीप, हाँ दिलीप कुमार के, दिलीप का मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के उसमें मैंने दीने की राय की पिक्चर का गाना पसंद किया है।
0: हाँ,
1: बड़ी महबूबा मेरी मस्तानी
0: अच्छा, आने से उसके आए बाहर,
1: बाहर। हाँ हाँ शुरू में
0: क्या बात
1: यही
0: है, क्या बात है। चलिए जल्दी से, एक्चुअली टाइम होने वाला है तो मैं आपको जल्दी से पहले गीत सुनवा देती हूँ, है ना?
1: है। हाँ हाँ ठीक है,
0: बातें किसी और
1: धन्यवाद।
0: दिन करेंगे आपसे।
1: जो क्या करेंगे। हाँ ठीक है,
0: ओके
1: साहब
0: जी, ओके, चलिए।
1: ओके ओके।

तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ आज्ञा दे अपनी दोस्त विजया जैन को नमस्कार।

0: हेलो MH हॉटलाइन।
1: अभी आप सुन रहे थे MH हॉटलाइन कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: वितरण करेंगे, साथ ही करीब 284 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से गांव, किसान, श्रमिक और वंचित वर्ग के जीवन संघर्ष को सजीव अभिव्यक्ति दी। और प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीरजा। हमारे श्रोताओं के फोन और उनकी पसंद के गीतों से सजा ये कार्यक्रम हर बार की तरह एक बार फिर आपके साथ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर और बिना देर किए जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हेलो,
2: आवाज आ रही है, आप अपना नाम बताइए पहले। तब
1: जी, मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं विजय पांडे बोल रहा हूँ। पहले दो लाइन में सुनाऊँ?
1: जी जी।
2: दोस्ती
1: जी,
2: ये दोस्ती है ये चिराग जिसे जलाए रखना,
1: बिल्कुल
2: दोस्ती गुल है इसे खिलाए रखना। हम रहे या न रहे इस जहां में, बस हमारी याद दिल में बसाए रखना। आज रेडिये मोहतरमा साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
1: आपको भी हम नमस्कार कहते हैं और स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। कार्यक्रम यहाँ पर है फोन करिए गीत सुने, आपकी पसंद के गीत आज हम आपको सुनवाएंगे।
2: पर कुछ कहना चाहूँगा।
1: बिल्कुल।
2: कहा गया है कि दोस्त वो नहीं जो एक तालाब खुश्क हो जाने पर मुर्गाबी की तरह उड़कर किसी दूसरे तालाब का रुख कर ले, बल्कि दोस्त तो वो है जो तालाब खुश्क हो जाने पर कमल के फूल की तरह सर झुकाकर वहीं पर खत्म हो जाए। यही सच्चे दोस्त की दोस्ती के पहचान का आला दर्जा है।
1: बिल्कुल, दोस्ती तो कुछ ऐसी ही होती है जो हर बुरे वक्त में, चाहे खुशी के पल हो चाहे दुख के पल हो, हमेशा दूसरे का, एक दूसरे का साथ निभाते हैं हम।
2: जी जी जी जी।
1: तो बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: आज दोस्ताना फिल्म का है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। हम सभी दोस्तों के लिए ये गीत समर्पित करना चाहूँगा।
1: कौन सी फिल्म का गीत है ये?
2: दोस्ताना फिल्म का।
1: चलिए ठीक है, तो आपका पसंदीदा गीत आप तक पहुँच रहा है।
2: जी, धन्यवाद आपको।
1: जी

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते, ग्राम
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: कैसे हैं, क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है मैडम, रिमझिम बारिश हो रही है यहाँ तो अभी फिलहाल।
0: तो बारिश का मौसम तो यहाँ पर भी है और बहुत अच्छा लग रहा है
1: हाँ सभी दूर अच्छा है, मौसम सुहावना है मैडम।
0: जी। और हैदर जी, बताइए घर में क्या चल रहा है? आज की दिन की शुरुआत कैसी हुई?
1: हाँ तो बस मैडम अभी फिलहाल तो अभी घर पे बैठे हैं, अभी थोड़े देर खेत पेड़ पे जाएंगे, बस ये शुरुआत है फिलहाल तो। अभी तो आज रफी साहब की पुण्य तिथि है, मतलब कल 46वीं, तो
0: जी
1: रफी साहब की आवाज में गीत है फिल्म पगला कहीं का। ये फिल्म का नाम है पगला कहीं का, वो उसका गीत है हाँ मुझे तुम यूं बुला ना पाओगे, रफी साहब।

0: आवाज में गीत है।
1: फिल्म का नाम है पगला कहीं का
0: और गीत के बोल है तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
1: बिल्कुल आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे।
0: हाँ मैडम, ये मैं परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं
1: जी।
0: शकीला बानो है, समीम बानो है, रुक्षार बानो है, शन्नो भी है और असीना भी है
1: जी। आपकी फैमिली के सारे जो भी मेंबर्स उनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप सॉन्ग, है ना?
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो चलिए बिल्कुल आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाया जाएगा।

0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप ठीक हो?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाम जानना चाहेंगे आपका?
1: पंडित सत्यनारायण तिवारी, सागर।
0: जी जी सागर से बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सागर से बात कर रहे हैं।
0: बताइए क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है, अच्छा मौसम है, अच्छी बारिश हो रही है।
0: यहाँ भी काफी अच्छी बारिश हो रही है और सुहावना मौसम हो रखा है, बिल्कुल खूबसूरत मौसम है।
1: जी मैम, आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ। और बताइए कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनवा दे?
1: आई मिलन की रात का।
0: आई मिलन की रात का कौन सा गीत?
1: सावन का महीना आया है।
0: सावन का महीना आया है। जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम में जब आप जुड़ते हैं तो जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं उस गीत से कोई याद आपकी जुड़ी होती है?
1: ये याद क्या, सावन का महीना है तो खुशी में उसके उपलक्ष्य में ही तो सुनना चाहती।
0: यानी सावन का महीना है तो चलो सावन का ही गीत सुन लिया जाए, है ना?
1: जी
0: चलिए बिल्कुल आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे।
1: जी ओके,
0: धन्यवाद कार्यक्रम से आप जुड़े। धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्ते।
1: हाँ नमस्कार, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश सर राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ दीदी।
0: देवास से बात कर रहे हैं, राजेश अग्रवाल।
1: हाँ, राजाराम नगर देवास से बोल रहा हूँ।
0: कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत दीदी, जैसे कल मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि है तो
0: जी
1: उनका ही गीत ले लीजिए, ये अमर अकबर एंथोनी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, या फिर कोई सा भी रफी साहब का गीत सुनवा दीजिए जी,
0: अमर अकबर एंथोनी से रफी साहब का गीत सुनना चाहेंगे।
1: उनकी पुण्यतिथि है ना
0: जी
1: मोहम्मद
0: जी
1: रफी की,
0: जी
1: तो करोड़ों श्रोता उनकी
0: जी
1: ओर से
0: बिल्कुल
1: श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको 46वीं पुण्यतिथि पर।
0: जी जी
1: और लोकेंद्र वर्मा है हमारे साथ में, राम बाबू मालवी है हमारे
0: हाँ।
1: दोस्त, इन सबके साथ में ये गीत सुनवा दीजिए आप
0: यानी आप
1: रफी साहब
0: अपने जो
1: की।
0: भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ ये गीत सुनना चाहते हैं, डेडिकेट करते हैं मोहम्मद रफी साहब को।
1: जी जी हाँ,
0: बिल्कुल। और बताइए क्या हाल चाल है
1: बस ये प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है देवास में मेरा।
0: जी? और बताइए दिन
1: और
0: कैसा
1: हाँ
0: शुरू हुआ आज?
1: बढ़िया है दिन, तो अभी कार्यक्रम ही सुन रहा है, रेडियो चल रहा है
0: अच्छा
1: मतलब
0: अच्छा
1: लगातार।
0: बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश सुबह हुई थी और अब रुकी भी है जैसे हो गई।

0: थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है और फिर बंद हो जाता है वापस।
1: अच्छा
0: और यह पानी तो आया था,
1: जी,
0: बाकी ऐसा वो नहीं आ रहा, जैसे लगातार नहीं आ रहा,
1: अच्छा
0: थोड़ी थोड़ी देर में सावन सेरे के हिसाब से आ रहा है, जैसे सावन
1: हाँ,
0: लग गया है।
1: सावन का महीना शुरू हो चुका है।
0: हाँ आज तो सावन शुरू हो चुका है।
1: चलिए, कार्यक्रम से आप जुड़े, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते
1: नमस्कार। मध्य
0: नमस्ते
1: प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश प्रसारण ना।
0: जी,
1: हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र से। हाँ,
0: महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं आप? कौन?
1: श्रीपाद जाखड़े। हाँ
0: जी
1: जी
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी
0: महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, पुणे से।
1: हाँ, पुणे पुणे से बात कर। हाँ, पुणे महाराष्ट्र से। जी
0: जी जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद। हाँ
0: बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके?
1: बस अच्छे हैं मैडम। यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे
0: लगातार बारिश हो
1: देहरादून से।
0: रही
1: हाँ
0: है, बहुत ज्यादा।
1: जी,
0: यहाँ
1: बहुत
0: भी
1: ज्यादा
0: बारिश
1: हो
0: हो
1: रही
0: रही है और मौसम तो मतलब बहुत ही प्यारा सा है।
1: है। हाँ
0: आपके
1: अभी
0: यहाँ ज्यादा
1: मतलब
0: बारिश हो
1: बारिश।
0: रही है ना?
1: हाँ जी, यहाँ तो
0: अच्छा अच्छा
1: लगातार बारिश हो रही है। अभी बंद भी हो रही है, कम ज्यादा ऐसा चल
0: अच्छा
1: रहा है
0: अच्छा
1: मतलब।
0: बताइए
1: जी
0: कौन सा गीत सुनवा दें आपको, कौन सी फिल्म का?
1: हाँ जी, हमको हम मोहम्मद रफी की आवाज में वो गाना सुनना है।
0: जी कौन सा गीत?
1: ये पुराना गाना है, चंगेज खां का गाना है। चंगेज खां पिक्चर, पुरानी पिक्चर, बहुत पुराना।
0: जी
1: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकते, ये गाना है।
0: जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पसंद का गीत सुनाने के लिए। और अगर नहीं भी मिल पाया तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे।
1: जी आप कौन बोल

0: है मैडम?
1: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
0: अच्छा,
1: जी
0: हाँ जी। तो आपको कल सुनने को मिलेगा ना
1: बिल्कुल, कल
0: कल?
1: 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है फोन इन का,
0: हाँ,
1: उसमें आप ये सुन पाएंगे।
0: तो 11 से 12 के बीच रहता है। हाँ
1: हाँ, 11 से 12 के
0: जी,
1: बीच में ही रहता है। 58 मिनट्स का
0: अच्छा,
1: प्रोग्राम रहता है, 58 मिनट
0: हाँ
1: का।
0: जी, हाँ,
1: ठीक
0: अच्छा,
1: है
0: बिल्कुल
1: जी,
0: जी,
1: कार्यक्रम से आप जुड़े,
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।

नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम, मैं जीनत अंसारी बोल रही हूँ, महेश्वर से।
0: जीनत अंसारी जी बात कर रहे हैं
1: जी।
0: बताइए कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
1: मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हूँ?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: मैम मुझे ये दिल आशिकाना मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना है।
0: और बताइए, बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: बहुत कम हो रही है मैम बारिश, रुक रुक के हो रही है बारिश।
0: अच्छा, रुक रुक के हो रही है बारिश।
1: जी
0: आपको अच्छा लगता है बारिश में जाना बाहर?
1: जी मैम, बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम।
0: बिल्कुल, बाहर जाइए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना है, भीगना नहीं है
1: जी
0: ज्यादा,
1: मैम,
0: है ना?
1: जी मैम, सभी को अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए।
0: और ये जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है ना, इसमें अच्छी अच्छी चीजें खाने का बड़ा दिल करता है, भुट्टे हुए या फिर पकौड़े, चाय, है ना?
1: जी
0: तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे।
1: थैंक यू मैम,
0: कार्यक्रम से आप जुड़े, धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: अशोक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मैडम,
0: अशोक
1: राजस्थान जयपुर
0: श्रीवास्तव
1: से। जी मैडम, कैसे हो?

0: मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ मैडम, बस फोन ट्राई कर रहा था तो लग गया
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी
1: जी।
0: बात है, लग गया।
1: मैडम एक गाना सुनना है, फिल्म
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: का नाम है सावन को आने दो, इसी में एक गाना है तुम्हें गीतों में डालूंगा।
0: सावन को आने दो फिल्म का नाम है
1: जी मैडम,
0: और गीत का नाम क्या है?
1: तुम्हें गीतों में डालूंगा सावन को आने दो मैडम। और ये डैडी के डॉप को रहेगा, और आपके यहाँ दो कॉलर कॉल करती हैं रोनू नंदिनी, उनका
0: जी,
1: कॉल हमें बहुत पसंद है, तो
0: अच्छा,
1: उनको भी डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल। और बताइए, क्या चल रहा है? कार्यक्रम सुन रहे हैं अभी इस वक्त आकाशवाणी पर आप?
1: कभी कभी सुनते हैं मैडम। जी
0: कभी कभी सुनते हैं।
1: जी
0: और बताइए, घर में और लोग सुनते हैं कार्यक्रम?
1: मेरे बच्चे वगैरह हैं वो सुनते हैं कभी
0: अच्छा
1: कभी,
0: अच्छा
1: हाँ दो बहुएं भी हैं, नाती पोते भी हैं, हाँ
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: कभी कभी लगा देता हूँ, संडे को ज्यादा सुनते हैं पूरी फैमिली है।
0: अच्छा अच्छा मौसम के क्या हाल है वैसे आपके यहाँ? सभी लोगों से मौसम की बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पर?
1: मैडम मौसम का तो ऐसा है कि इस बार बारिश बहुत ही कम है हर जगह, तो
0: हाँ, ये तो है, कोई बात नहीं,
1: ईश्वर से कामना करते हैं कि बारिश बहुत जल्दी आए
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: सभी किसान भाई लोग खुश हो जाएं।
0: हाँ, बारिश होनी चाहिए।
1: जी जी मैडम जी,
0: चलिए, पूरी कोशिश करेंगे हम आपका गीत सुनवाने के लिए, है ना?
1: ओके धन्यवाद मैडम।
0: कार्यक्रम से आप जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। मैं आपका शुभ नाम जानना चाह रहा हूँ।
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा नीरजा दीदी, नीरजा दीदी। अब तो और क्या हाल चाल है भोपाल का?
0: बहुत अच्छे हाल चाल हैं, आप बताइए, आपके क्या हाल चाल हैं?
1: हमारे भी बहुत अच्छे हाल चाल है। बीच बीच मानसून लपता हो जाती है तो वही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। गर्मी उमस बहुत हो जाती है।
0: अचानक से बारिश आ जाती है, कभी बंद हो जाती है ना?
1: जी।
0: तो भाई, आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
1: जी, नाम तो हम जरूर बताएंगे। हालांकि हमारे पूरे इंडिया के हमारे नाम और हमारे आवाज से परिचित हैं दीदी, पर हमको थोड़ा अफसोस हो रहा है कि आप हमारी आवाज से नहीं पहचान पा रही हैं।
0: कोई बात नहीं, जान जाएंगे अब, बता दीजिए नाम।
1: तो मैं आपका प्यारा सा भाई खैर मझियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ।
0: राम जी गर्ग, ठीक
1: जी
0: है, रीवा से बात कर रहे हैं आप।
1: जी जी जी जी
0: बताइए, कौन सी
1: जी
0: फिल्म का कौन सा गीत सुने?
1: ये बेखुदी फिल्म का गाना मैं सुनना चाह रहा हूँ दीदी।
0: बेखुदी,
1: जी जी जी
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बेखुदी से?
1: जब ना माने दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, आले ये दिल तमाम लिखा।

0: दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी पसंद के गीतों ने आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी अपनी रेडियो साथी नीरजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति नीरजा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 के संसद से पारित होने का स्वागत किया। ये विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले में आयोजित प्रदेश स्तरीय ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रूपये के ऋण का वितरण करेंगे। साथ ही करीब 284 करोड़ रूपये से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपन्यास

कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से गांव, किसान, श्रमिक और वंचित वर्ग के जीवन संघर्ष को सजीव अभिव्यक्ति दी। ग्वालियर में देश का पहला ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्योगपतियों से हुई चर्चा में यहां करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। प्रदेश में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बालाघाट पुलिस की पहल को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बालाघाट पुलिस को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। और प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। समय है आपकी पसंद के गीतों से सजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में जिन्होंने हमें गीत सुनने की फरमाइश भेजी है वो हैं बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बड़ई, शेख मुनीर मंसूरी, और ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव, संजयपुरी। साथ ही नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आप तो ऐसे ना थे का गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत निदा फाजली का है और इसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने। लीजिए सुनिए।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए अब सुनिए साजन दहलवी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है श्याम जी घनश्याम जी ने। फिल्म का नाम है ठोकर। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, सरिता सिद्धांत प्रिंस और एकांश। आकाश हाइट बहादुरपुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि और परी। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है प्रियंका, रवि और विजय ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म ठोकर का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बंडा जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी, अनरथ हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कश्मीर की कली का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत SH बिहारी का है और इसे संगीत से सजाया है OP नैयर ने। लीजिए सुनिए।

आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन। गीत सुनना चाहा है सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। साथ ही राजपुर से घिसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। ग्राम बड़बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म तीसरी मंजिल का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल मजरूह के हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। ये एक महत्वपूर्ण जनहित सूचना है। भोपाल पुलिस
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामनी काय कांतारे की 16वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 16वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि चारुमित्रा से मिलने चंद्रपुर जा रहे हैं। मार्ग में देवी मणिभद्रा का तांत्रिक क्षेत्र पड़ता है। देवी मणिभद्रा उन्हें चंद्रपुर पहुंचाने में सहायक बनती हैं। अब आगे

0: राजा भर्तृहरि चारु मित्रा के चंद्रपुर की ओर चल पड़ते हैं। उनके साथ मणिभद्रा भी हैं। मार्ग में एक भयानक नदी आती है। मणिभद्रा भर्तृहरि से कहती हैं,
1: राजा भर्तृहरि, हमें इसी जल मार्ग से होकर चंद्रपुर की राह पकड़नी होगी, इस नदी को पार करके।
2: किंतु मगरमच्छों से भरी इस नदी में पार उतरने का तो कोई साधन ही उपलब्ध नहीं है और तैरना संभव नहीं लगता।
1: देखते हैं, कहीं कोई काष्ठ स्कंद मिलेगा, बांस का डांड भी मिल सकता है। भैरव भैरवी यहाँ जल साधना करते हैं, कुछ तो मिलेगा ही। आओ मेरा अनुसरण करो नरेश, मार्ग सकरा है, सरक कर ही इनसे निकला जा सकता है। यहाँ असावधानी, प्रमाद या स्खलन किसी को भी इन जीवों का आहार बना सकता है। तनिक ठहरो। मकर यमन।
0: एक विशाल काय मगर पानी में तैरता हुआ आता है। मुंह से पानी उछालता हुआ अपने विशाल जबड़ों को कटकटाता हुआ बढ़ता है। उसकी सांसों से निकलती फुत्कार डरावनी है।
1: बोलो भर्तृहरि, इसकी पीठ पर बैठना चाहोगे या अभी भी काष्ठ स्कंद की खोज करूं? ये हमें लेकर स्वतः चलेगा। काष्ठ स्कंद को तो डांडों से खेना पड़ेगा।
2: या सचमुच हमें ले जाएगा?
1: ये हमारा मकरयान है राजा भर्तृहरि।
2: फिर जैसा माते का आदेश।
1: आरूढ़ हो जाओ महामकर पर भर्तृहरि, निर्भीक निसंकोच किंतु सावधानी से। मुझे दोनों हाथों से पकड़े रहना, फिसले तो धारा के जल जंतु तुम्हारे स्मृति तक शेष नहीं छोड़ेंगे। यही संसार का क्रम है। ये जीव प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य इन्हें अपनी साधना से साध तो सकता है, किंतु इनका स्वभाव सदा स्वायत्त रहता है। उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। असावधान साधक अपने ही साधन का आखेट बन जाता है। चलो चलो महामकर, चलो।

0: महादेव, क्या इस मकर को मंत्रों से वशीभूत किया है आपने?
1: मंत्र भी इस विशेष साधना का एक अंग है। मंत्र का प्रमुख तत्व है शब्द और ध्वनि। भिन्न भिन्न शक्तियों के साधना के लिए भिन्न भिन्न मंत्र होते हैं। मंत्र की साधना व्यक्तिक होती है, सार्वजनिकता में मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाती है।
0: क्या मैं भी मकर साधना सीख सकता हूँ माते? माते, आप मेरी गुरु बनेंगी?
1: सब कुछ परम भैरव की इच्छा पर निर्भर है राजन। साधना का ज्ञान कठिन है, समझना और भी कठिन। यदि तीनों संयोग मिल भी जाएं, तो अन्य अनेक बाधाएं आती हैं। पहले तो अपनी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। फिर भी भर्तरी, मेरे यहाँ तुम्हारा सदैव स्वागत है। वो लो, किनारा आ गया है, वो सामने का मार्ग तुम्हें चंद्रपुर ले जाएगा।
0: माते, आपसे मिलकर कृतकृत्य हुआ, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ।
1: महाभैरव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। विदा राजा भर्तरी, विदा विदा।

0: आगे के दुर्गम वन प्रांतर को पार करने का भर्तहरि को लेश मात्र भी भय नहीं था। वो जानते हैं कि किसी भी क्षण कोई भी संकट सामने आ सकता है, लेकिन अब उनके मन में ये विश्वास भी बन चुका था कि संकट से पार पाने की कोई ना कोई युक्ति भी वहीं से निकल आएगी। पहर भर में वो इस भयावह वन से सकुशल निकलकर मुख्य मार्ग तक जा पहुंचे। वहां उन्हें एक सार्थवाह मिल गया और अब वो चंद्रपुर के निकट थे। वो शीघ्र ही चारु मित्रा तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे।
1: भद्र भद्र,
2: क्या हम?
1: हाँ, देवी चारुमित्रा के भवन तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे।
2: अरे, ये छोटा सा नगर है जिसके सभी मार्ग चारुमित्रा के भवन पर समाप्त होते हैं और सभी वहीं से प्रारंभ होते हैं। जिधर भी चल पड़ेंगे पहुंचेंगे आप चारुमित्रा के द्वार पर ही। उज्जैनी प्रवास जिस तरह महाकाल के दर्शनों के बिना अधूरा है, उसी भांति चंद्रपुर में चारुमित्रा का दर्शन भी है।
1: कुछ रुष्ट लगते हो मित्र चारुमित्रा से।
2: रुष्ट मैं और चारुमित्रा से क्यों? अच्छा बताइए, कोई किसी से रुष्ट या तुष्ट क्यों होता है? अरे, कोई अपेक्षा हो, कोई व्यवहार हो। अपेक्षा और व्यवहार तो समानों के बीच होती है मित्र। अरे, कहां चारुमित्रा और कहां मैं? उससे अपेक्षा तो सृष्टि, सामंत और मूर्ख रखते हैं। मैं इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, आपकी कोई अपेक्षा हो सकती है? वैसे आप आए

0: आरंगढ़ राज्य के अंतर्गत है ना?
1: हाँ, कहने को तो है, किंतु वास्तव में यहां की अधीश्वरी चारुमित्रा है। सुना है उसने नरेश का आमंत्रण भी ठुकरा दिया है।
0: अर्थात विजय सेन का?
1: तुम तो नरेश का नाम इस तरह से ले रहे हो जैसे वो तुम्हारे अधीन कोई अनुचर हो।
0: मित्र, हमें नरेशों अधिपतियों से क्या लेना देना, वो जो है सो बने रहें। आपने बताया कि चारुमित्रा ने उनका आमंत्रण ठुकरा दिया, तो वो भी तो हमारी तुम्हारी तरह मनुष्य हुए ना।
1: सुनो अजनबी, अन्यथा मत लेना। आप अपरिचित हैं, अपरीक्षित भी और कूट पुरुष भी हो सकते हैं। अरे ये लो, चारुमित्रा के भवन की हम समीप पहुंच चुके हैं।
2: उसके दर्शनार्थियों का शोर सुन रहे हो ना?
1: आगे बढ़ जाइए। वो रहा चारुमित्रा का सम्मोहन द्वार।
3: लो, देवी चारुमित्रा गवाक्ष में दर्शन देने के लिए पधार रही है। मित्र सावधान हो जा।
4: देवी चारुमित्रा की जय। देवी चारुमित्रा की जय। देवी चारुमित्रा की जय।
5: अपने रूप गुण से भली भांति अभिज्ञ चारुमित्रा गवाक्ष पर प्रकट हुई तो जय घोष हुआ।

0: धन्य होने, कृतार्थ करने के सैकड़ों स्वर आकाश में गूंजने लगे। चारों मित्राने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर अपने रसिकों अभिलाषियों का अभिवादन किया तथा पार्श्व में खड़ी परिचारिका के हाथों में थामी हुई कनक परात से सुगंधित पुष्पों की अंजलि भरकर नीचे खड़े अपने प्रशंसकों पर उछाल दी।
1: देवी चारुमित्रों की जय, देवी चारुमित्रों की जय, देवी चारुमित्रों की जय।
0: स्मित के साथ दंत मुक्ताओं की द्युति बिखेरती चारुमित्रा आधी घड़ी तक गवाक्ष में ठहरी रही, तदनंतर गवाक्ष से भीतर चली गई। रसिकों प्रशंसकों की दृष्टि के आगे लहराता गवाक्ष चीनांशुक मात्र रह गया। फिर भी जनसमूह ठहरा रहा, उस हिलोर भरते चीनांशुक की ओर ताकता रहा। जनसमूह धीरे धीरे घटने लगा, एक गहरा मौन व्याप्त था। भर्तहरि और कुछ प्रशंसक अब भी वहां थे।
2: मित्र
3: हाँ?
2: देखो कोई उस ओर आ रहा है।
3: अरे हाँ, अरे ये कोई अन्य नहीं, ये तो चारु मित्रा के अनुरागी सृष्टि स्वर्णपाद का शाकट है। सठिया चुके सृष्टि को चारु मित्रा यदा कदा विरोध के लिए आमंत्रित कर लेती है। इस अनुकंपा से गदगद सृष्टि ने ये व्यवस्था की है कि प्रिया के दर्शनार्थ जुटने वाले प्रेमियों के मध्यान्ह और रात्रि भोज की व्यवस्था 2 वर्षों से वो करता आ रहा है। अपना अपना समर्पण है भाई।
2: भोजन का भी प्रबंध हो गया, आप यदि अनुमति दें तो रात भी मैं यहीं व्यतीत कर लूं।
3: अरे भाई, हम अनुमति देने वाले कौन है? ये तो चारु मित्रा का प्रांगण है और तुम हम सभी से ज्येष्ठ प्रतीत होते हो। लकुटी हाथ में लेकर भिक्षुक का वेश भी बना रखा है तुमने।
2: प्रेमी और भिक्षुक में अधिक अंतर नहीं होता मित्र।
4: रुक्ष बदन, अस्त व्यस्त केश, शमशु मलिन वेश और अधेड़ वय, फिर भी चारु मित्रा की चाह में घनघोर आश्चर्य।
2: देवी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
4: अपरिचित बंधु, मैं न तो देवी चारु मित्रा की परिचरी हूं और न ही कर्म कर सेविका, अभिवादन की अधिकारी भी नहीं, तो फिर क्यों ना तुम्हारे अभिवादन को उपहास समझूं?
2: तुम्हारे प्रति उपहास का मैं सोच भी नहीं सकता। भद्रिनी चारु मित्रा से भेंट करने अवश्य आया हूं, मेरे लिए उनसे मिलना कठिन भी नहीं है, किंतु किसी कारणवश मैं स्वयं को सबके सामने प्रकट नहीं कर सकता।
4: देवी चारु मित्रा तुमसे भेंट करेंगी? सपना तो नहीं देख रहे?

0: यदि चारों मित्रा मेरा संदेश पाने के बाद मुझसे भेंट नहीं करती तो मैं तत्काल यहां से चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम उनके निकट वास करती हो, तो उनसे कोई ना कोई संबंध या परिचय अवश्य होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपना संदेश भेजने के लिए तुमसे निवेदन किया है बहन।
1: चतुर हो तुम। तुमने मुझे बहन कहा है तो मैं तुम्हारा संदेश भी पहुंचा दूंगी, यद्यपि यह अपनी सीमा का अतिक्रमण होगा। देवी तुमसे रुष्ट भी हो सकती हैं। तुम वो तो नहीं हो जिसका वेश तुमने धारण कर रखा है।
0: बहन, मैंने कोई वेश नहीं बनाया, जो बनता गया है उसे ही स्वीकार कर लिया है।
1: तुम्हारा नाम?
0: वही मेरा बंधन है, इसीलिए तो उसे प्रकट नहीं करना चाहता। देखना यह है कि चारु मित्रा मनुष्य को नाम से पहचानती हैं या उसके गुण से।
2: नूनम हिते कविवरा विपरीत बोधा ये नित्यमाहुः अबला इति कामिनीनां याभिर विलोलतर तारक दृष्टिपाते शक्रदयोपि विजितास्त अवला कथमता। ये पत्र आपने भेजा है?
0: हाँ देवी।
2: पद का विन्यास नीति शतक के कवि जैसा है।
0: पद भी नीति शतक के कवि का ही है।
2: तो आप नीति शतक के कवि अर्थात राजा भर्तृहरि हैं?
0: हाँ देवी।
2: चारु मित्रा, अतिथि महाकवि के स्वागत में प्रणति है, आतिथ्य स्वीकार करने का अनुग्रह करें।
0: महिमामयी चारु मित्रा से भेंट करने का मुझे अपार हर्ष है।
2: तो कृपा कर पधारें। सुनंदा, अतिथि सत्कार के लिए मद मंजूषा लेकर आओ। मैंने सुना था कि महाराज इन दिनों अवंती में नहीं है, वहां इन दिनों एक उत्सव भी हो रहा है। महादेवी गर्भ से हैं, महाराज पिता बनने वाले हैं। महामात्य पूर्णसेन ने यही संदेश भेजा था, जा ही नहीं पाई। गायक कवि बसंत गया है। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वो आपको आपका ही काव्य अपनी जन भाषा में सुनाए। मैंने उसे बताया नहीं कि आप वहां नहीं हैं। अगर वो जानता तो उत्सव में नहीं जाता। आपकी अनुपस्थिति से निराश हुआ होगा वो।
0: भद्रे, मैं उससे नीति शतक के पद सुन चुका हूं।
2: सच महाराज?
0: हाँ, और ये भी जाना है कि बसंत ने काव्य का मर्म आपसे ही समझा है।
2: ये बताने की क्या आवश्यकता थी, किंतु उसने मुझे नहीं बताया कि वो आपसे मिल चुका है और अपने पद सुनाकर कृतार्थ हो चुका है।
0: क्योंकि वो नहीं जानता था देवी कि जिस विरागी साधु को वो पद सुना रहा है वही भर्तृहरि है।
2: ये कैसी पहेली है देव?
0: जीवन भी एक पहेली है भद्रे, जहां न जीवन का संभार है और न मृत्यु का भय। सब के सब ऐन्त्रिक काल में संचरण कर रहे हैं, भोग को चरम मुक्ति का सोपान मानते हुए वर्तमान के क्षण की तरलता को मुट्ठी में बांधना चाहते हैं। देवी चारुमित्रा, मैं योगिनी मणिभद्रा के पास ठहरा था, वहां जाना था ये रहस्य।
2: सुना है वहां से कोई जीवित नहीं लौटता, राज्य ने भी उसे वर्जित क्षेत्र घोषित कर रखा है।
0: संसार अनेक भ्रमों का पुंज है देवी, भ्रम कभी सत्य प्रतीत होता है कभी असत्य प्रतिभासित होता है। जिसे सत्य समझकर भर्तृहरि ने गृह त्यागा था, अब लगता है कि वो भ्रम था। भ्रम
2: देव, कदाचित किसी क्रूर आघात से उत्पीड़ित व्यथित हैं, इसे छोड़े। ये समय विगत को भूल आगत के स्वागत का है। देखें पात्र में भरी सुरा कितनी उत्कंठित चंचल हो रही है।
0: बीते हुए कल भी यही मदिरा मिट्टी के झूठे और खंडित कुल्हड़ में थी।
2: कल का स्वप्न बीत गया देव, आज का सत्य हमारे सामने है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री सृष्टि के रहस्य में प्रवेश नहीं कर पाती है।
0: शची, शची। किंतु चारु मित्रे, स्त्री तो कभी भी मुझे अनुपलब्ध नहीं रही, नैराश्य की अवस्था में भी विधाता ने शची से भेंट करा दी।
2: देव, कहीं यह लकुट शची की भेंट तो नहीं?
0: शची? हाँ भद्रे, ये विदा करते हुए शची ने ही मुझे पकड़ाई थी, किंतु तुमने ये कैसे जाना?
2: इसलिए कि वही एकमात्र स्त्री रही जिससे देव का संयोग बना है।
0: क्या कहती हैं भद्रे? रानी पिंगला, चंपा सदैव उपलब्ध समर्पिता रही। और भी
2: यह देव कि वे सब स्त्री की देह में कोई आपकी पत्नी रही, कोई दासी, कोई क्रीता, तो कोई उत्सुका।
0: तो सुमुखे, एक पहेली सी बार बार मन में उठती है। इससे पूर्व भी ये प्रश्न मेरे समक्ष अनेक बार आ खड़ा हुआ है, किंतु मैंने इसे टाला या प्रमाद में कोई महत्व नहीं दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मिलकर उसका मर्म पकड़ा जा सकता है।
2: प्रश्न क्या बहुत गंभीर है देव?
0: स्यात।
2: प्रश्न क्या है?
0: स्त्री से संबंधित है।
2: वो तो होगा ही, पुरुष से संबंधित प्रश्न में स्त्री कब सम्मिलित हो पाती है?
0: तो देवी, भाव कुछ इस प्रकार है कि स्त्री बातें किसी पुरुष से करती है, देखती किसी और को है और हृदय में किसी और को बसाती है, तो फिर उसे प्रिय कौन होता है?
2: ये तो काव्य प्रसंग है, रच डालिए एक पद इस पर।
0: किंतु जब तक भाव का मर्म चित्त में प्रतिबिंबित ना हो, तब तक काव्य कहां संभव होता है देवी?
2: तो फिर मैं प्रयास करूं?
0: तुम? यदि कर सको तो मुझे प्रसन्नता होगी देवी। तुम्हारे सहयोग से नीति के साथ एक नया अनुभव जुड़ सकता है। श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, कितना समीचीन होगा ये उपक्रम। प्रयास करो चारु, प्रयास करो, कभी भर्तृहरि का संबल बनकर।
2: भर्तृहरि?
0: हाँ चारु।
2: भर्तृहरि?
0: हाँ चारु।
2: भर्तृहरि?
0: हाँ चारु।
2: कुछ कहने का आवेग सा है।
0: कहो कहो, मैं सुनने को प्रस्तुत हूँ चारु।
2: तुम्हारा भाव अब मेरा भाव बनता लग रहा है।
0: उसे अपने शब्द दो प्रिये, अपने शब्द दो।

0: धन्य धन्य साधु साधु सुभगे, साधु प्रिय साधु, विलक्षण प्रतिभा है तुम्हारे पास
1: देव।
0: विलक्षण प्रतिभा है, भावों की ऐसी सहज अभिव्यक्ति, अद्भुत अद्भुत, साक्षात वीणा वादिनी का विग्रह। समझ में नहीं आ रहा देवी कि तुम्हें क्या कहकर सम्मान दूं, केवल ये कर सकता और यही करना चाहिए कि तुम्हारे चरणों में विनत हो जाऊं।
1: अरे अरे,

0: ये क्या करते हैं देव? मैं एक क्षुद्र जन कल्याणी रूप जीवा, काल का अत्यंत अल्पंश अपने शरीर की अंजुरी में थामे, इच्छाओं कामनाओं की व्यवसायी, समय आज चारु मित्रा का है तो कल न जाने किसका होगा। और चारु मित्रा काल की जाने किस कंदरा में, जाने कहां, जाने किस हाल में पड़ी होगी।
1: ना प्रिय, ना ना प्रिय, कल की कौन जाने, किंतु आज आज हमारा है। महाकाल ने हमें सौंपे हैं ये क्षण प्रिय।
0: हाँ देव,

भर्तहरि ने चारु मित्रा को अपनी भुजाओं में भर लिया। बड़ी देर तक वो चारु मित्रा को हृदय से लगाए रहे। दोनों की सांसों का संगीत देह में भरने लगा। तत् अधर मिल गए। सांसों के स्वर, देह की लय ताल, नई बंदिश में कविता की छंद जागने लगी।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 16वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार सुभाष सक्सेना, मणिभद्रा रंजना तिवारी, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, भद्र भागीरथ साहू, स्त्री कीर्ति कुलश्रेष्ठ और चारुमित्रा दीप्ति अग्निहोत्री।

0: परिकल्पना, पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढोंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 16वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 के संसद से पारित होने का स्वागत किया है। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले में आयोजित प्रदेश स्तरीय ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 284 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समान विधिक संरक्षण प्राप्त होगा। यह विधेयक प्रत्येक राष्ट्रवासी के स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा और राष्ट्रीय मूल्यों के सम्मान का सशक्त प्रतीक है। ग्वालियर में देश का पहला ग्लोबल

0: टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उद्योगपतियों से हुई चर्चा में यहां करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। प्रदेश में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बालाघाट पुलिस की पहल को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बालाघाट पुलिस को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। और प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत प्रदेश के 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर सहित कई अन्य जिलों में बारिश की जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडिया वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बज रहा है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

ठंडी हवा चली और बारिश आ गई। जल्दी से चाय और पकौड़े बनाओ मेरी प्यारी सखियों और अपने रेडियो सेट के पास आ जाओ। जी हाँ, बादलों ने जब भी आसमान को घेरा है, मुझे मेरी प्यारी सखियों का चेहरा याद आया है। कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है सखियों आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। नमस्कार। हमें पता है इस भीगे भीगे रुत में आप बड़ी शिद्दत के साथ पूरे परिवार का ख्याल रख रही हैं, बच्चों की फरमाइश पूरी कर रही हैं, चुटकी बजाकर समय पर करना भी चाहिए क्योंकि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माँ की भूमिका महत्वपूर्ण जो होती है। बच्चे पिता से ज्यादा माँ के साथ समय जो व्यतीत करते हैं, जन्म से लेकर पैरों पर खड़ा होने तक उसके सर्वांगीण विकास में माता का योगदान अतुलनीय होता है सखियों। एक बच्चे के जीवन में माँ की सक्रिय सकारात्मक भूमिका उसके सफल व्यक्तित्व का आधार बनती है। माँ समय समय पर कहानियों और नैतिक उदाहरणों से बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं। आप भी ऐसा करती हैं ना? खेल के माध्यम से उसे हार और जीत के दौरान सरल सहज रहना सिखाती हैं। शिष्टाचार विनम्रता जैसे गुणों को सहज ही बच्चे माँ के व्यवहार से आत्मसात कर लेते हैं। कुल मिलाकर सखियों, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि माँ प्रथम पाठशाला जो होती है। और सखियों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। जी हाँ सखियों, यदि आप मन बना रही हैं कुछ बिजनेस का, तो आप लोन लेकर अगर सोच रही हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन ले सकती है। जी हाँ सखियों, महिलाओं को ब्याज दरों में विशेष छूट भी दी जाती है। ये लोन 3 श्रेणियों में मिलता है। शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर 50,000 से 5 लाख रुपए और तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपए। आवेदन सखियों, आप अपने नजदीकी सरकारी प्राइवेट बैंक, ग्रामीण बैंक या माइक्रो फाइनेंस संस्था में जाकर कर सकती है। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो पहचान का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र में बिजली का बिल या आधार कार्ड, बिजनेस से जुड़े दस्तावेज में सखियों बिजनेस का नाम, पता और आय का प्रमाण पत्र जिसमें पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ITR या GST रजिस्ट्रेशन यदि लागू हो, साथ ही पासपोर्ट साइज का फोटो अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सखियों, आवेदन फॉर्म के लिए आप मुद्रा ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकती हैं। और अब आया सावन झूम के, जी हाँ ये फिल्म का नाम है, तो सुन लेते हैं इसका एक प्यारा सा मधुर गीत।

0: सखियों, गीत हमने सुन लिया, झूलों का आनंद भी ले लिया, और अब सुनते हैं कहानी समय के साथ रूपाली पाटनी के स्वर में।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों को रूपाली पाटनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए पेश कर रही हूँ मेरी कहानी समय के साथ। वह समय को यह खुशखबरी सुनाने के लिए उतावली हो रही थी। बॉस के रूम से बाहर निकलते ही उसे फोन लगाया। समय, आई एम सो हैप्पी। अवधि के मन की खुशी उसकी आवाज में घुल गई थी। वह तो तुम्हारी आवाज से ही पता चल रहा है। मैडम सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हो गई हैं शायद, समय ने हंसते हुए कहा। दत्त तेरे की, तुमने तो मुझे खुशखबरी सुनाने का मौका भी नहीं दिया। अरे यार, तुम ही सबसे योग्य उम्मीदवार थी, प्रमोशन तुम्हें मिलना ही था। तुम तो यह बताओ, पार्टी के लिए कहाँ मिलना है? समय अधिकार पूर्वक बोला। अभी तो पापा मम्मी को भी नहीं बताया है। आज की शाम तो उनके साथ सेलिब्रेट करने में और बधाई के फोन लेने में ही उड़नचू हो जाने वाली है। कल तुम हिमाचल के लिए निकल रहे हो, तुम वापस

0: आ जाओ, फिर बढ़िया वाली पार्टी करेंगे। अवधि ने समय को आश्वस्त किया।
1: इतना लंबा इंतजार?
0: अरे इंतजार का फल मीठा होता है, अवधि हंसते हुए बोली।
1: जैसी मैडम की इच्छा, चलो एंजॉय योर सक्सेस अवधि, बाय।
0: कहते हुए समय ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मम्मी पापा, अवधि और अवधि की छोटी बहन परिधि एक अच्छे से रेस्तरां में अवधि के प्रमोशन की खुशी मनाने जा पहुंचे। दिसंबर की सर्द रात, अपनी मेहनत के सफल होने का मीठा एहसास और गर्मा गर्म सूप। अवधि अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मम्मी मीरा ने सही मौका पाकर अवधि से कहा, अवधि तुम कहो तो समय के मम्मी पापा से मिल लें हम लोग, एक बार उनका मन जान लें तो हम भी थोड़े निश्चिंत हो जाएं।
1: क्यों मोहित, ठीक कह रही हूँ ना मैं?
0: मम्मी ने पापा की भी सहमति लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: पापा मोहित ने कहा। तभी खाना आ गया और बात आई गई हो गई। पर मीरा के मन के आंगन में तो अवधि की शादी का ख्याल प्रतिदिन आने वाली गौरैया की भांति जब तब फुदकने लगता था। उसने एक दो दिन बाद पुनः इस विषय पर अवधि से चर्चा करना चाही, पर वह थकी होने का बहाना करके फिर से टाल गई। मीरा के लिए अवधि का यह व्यवहार एक पहेली हो गया था। दो तीन दिन तो उसने स्वयं को जज्ब किया, पर फिर उससे रहा न गया। उसने अवधि से स्पष्ट ही कहा, देखो तुम 25 की हो चुकी, अपने जॉब में भी अब सेटल हो गई हो, आखिर तुम्हारे मन में है क्या? अवधि कुछ क्षण तो चुप रही, फिर कहने लगी,
1: मम्मा मुझे शादी ही नहीं करना है।
0: मीरा ने बड़ी हैरानी से कहा,
1: क्या, पर क्यों?
0: अवधि ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मा दिन भर ऑफिस के बाद मुझे मेरा मी टाइम भी तो चाहिए होता है, क्या ससुराल में ऐसा हो पाएगा? अभी मेरे फ्रेंड्स और मैं वीकेंड पर अक्सर कहीं घूमने चले जाते हैं, ससुराल में मैं यह सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी? नया घर, नए लोग, नए तौर तरीके, उनकी मुझसे उम्मीदें, फिर आजकल तो पार्टनर का भी कुछ भरोसा नहीं होता, मम्मा कब चीट कर जाए, उसके बाद बच्चे।
1: ना बाबा ना, मम्मा मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी।
0: मम्मी ने दोस्ताना लहजे में अवधि से कहा, अवधि शादी को लेकर तुम्हारे मन में पल रही आशंकाएं मैंने सुनी, तुम्हारी बातों को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। शादी के साथ कुछ उलझने जुड़ी तो होती हैं, पर बेटा विवाह समाज की बहुत ही मौलिक और आवश्यक व्यवस्था है, इसके बिना जीवन अधूरा है। अच्छा बताओ, परिधि का MBA के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो उसे बाहर भेजेंगे या नहीं?
1: जरूर भेजेंगे,
0: अवधि ने तुरंत कहा। तो परिधि को नए देश, नए समाज, नए टीचर्स, नए वातावरण के अनुसार खुद को ढालना होगा। परिधि यह सब करेगी या नहीं?
1: हाँ करेगी तो सही,
0: अवधि ने धीरे से कहा। तुम लोग भी जब जॉब चेंज करते हो तो नए काम, नए लोगों, नई जगह के साथ मैनेज करते ही हो, फिर शादी तो जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बड़ा परिवर्तन है। इतनी बड़ी घटना के साथ छोटे छोटे बदलाव तो जुड़े ही रहते हैं, पर बेटे इन बदलावों के प्रति हम सकारात्मक रहें, थोड़ी समझदारी से काम लें तो जीवन की बगिया में बहार आ जाती है, खुशियों के फूल महकने लगते हैं।
1: वो तुम्हारे फेवरेट एक्टर ने कहा है ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: बस ऐसा ही कुछ शादी के साथ भी होता है, मम्मी नाटकीय अंदाज में बोली, फिर समझाते हुए कहने लगी, यकीन मानो अवधि, कई बार चीजें सोचने में अधिक कठिन लगती हैं, पर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती बेटा।
1: हाँ परीक्षाओं के साथ भी तो ऐसा ही होता है मम्मा, देने से पहले कितना डर लगता है, पर एक बार शुरू हो जाए तो फिर कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता,
0: और रिजल्ट तो कितनी खुशी लेकर आता है। अवधि ने मीरा की बात का समर्थन ही किया था। अवधि की सोच को सही दिशा में पाकर संतोष की सांस लेते हुए मीरा ने कहा, बच्चे शादी बंधन तो है, पर कुछ बंधन अच्छे होते हैं, जीवन बुनता है इनसे, बिखरी बिखरी सी नहीं रहती जिंदगी, जीवन को उद्देश्य, उसे सार्थकता देते हैं ये बंधन।
1: अच्छा बताओ तो भला, यदि मैं तुम्हारे पापा के साथ ना बंधती तो क्या हमारा यह हंसता खेलता परिवार आज होता?
2: धन्य हैं आप माँ, और धन्य हैं आपके विचार।
0: अब क्या आप

0: मुझे अपने प्रवचन पर मनन करने के लिए थोड़ा समय देंगी? अवधि ने कमर तक झुककर प्रणाम करने की मुद्रा में खिलखिलाते हुए मम्मा से कहा। अवश्य पुत्री, मीरा ने भी आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बात समाप्त हो गई। समय हिमाचल से वापस आ गया था। दोनों ने शनिवार शाम मिलना तय किया। हवा में सुहानी ठंडक घुल रही थी, फिजाओं में मधुर संगीत की स्वर लहरियां थी। हरितिमा और खूबसूरत फूलों से सजा कैफेटेरिया का रूफटॉप था। समय और अवधि दोनों ही खिला खिला महसूस कर रहे थे। समय ने अवधि को एक बेहद सुंदर नक्काशीदार छोटा सा घर भेंट किया, जो वह हिमाचल से खास उसी के लिए लेकर आया था। एक गुलाबी महकता कागज बड़े जतन से उसमें तह करके रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, क्या मेरे घर को अपना घर बनाओगी अवधि? अवधि ने समय की आंखों में झांका तो उसे यूं महसूस हुआ कि समय का साथ रहा तो जीवन की हर परेशानी, हर उलझन वह सरलता से पार कर लेगी। जीवन एक खूबसूरत सफर महसूस होगा उसे समय के साथ। उसने धड़कते दिल से अपने आरक्त कपोलों की गर्माहट को महसूस करते हुए कांपते हाथों से उस गुलाबी पाती के दूसरी ओर यह पंक्ति लिख दी। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है।
1: सखियों, अभी हमने सुनी कहानी समय के साथ रूपाली पाटनी के स्वर में। सखियो, कहानी सुनकर मन कर रहा है ना कि कुछ समय अपने हुनर को दिया जाए। बिल्कुल दीजिए। तो चलिए मी टाइम में बात करते हैं कि कैसे हस्तशिल्प और पेंटिंग के माध्यम से महिलाएं आज आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जी हाँ सखियो, ये स्वरोजगार, कौशल विकास और सशक्तिकरण का एक बेहतरीन माध्यम बन गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सखियों, सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं को पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प और आधुनिक पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने के बाद पेंटिंग और हस्तशिल्प का काम घर से ही शुरू किया जा सकता है। इसमें बहुत अधिक मशीनरी या बड़े कार्यस्थल की आवश्यकता नहीं होती, जिससे महिलाएं आसानी से अपना काम शुरू कर सकती हैं। जी हां सखियों, मधुबनी, वर्ली, फड़ और पट्टा चित्र जैसी पारंपरिक कलाओं का आधुनिक बाजार में बेचकर महिलाएं अपनी संस्कृति को सहेजने के साथ साथ अच्छी आमदनी कमा रही हैं। क्या सोच रही हैं? यदि आप भी इच्छुक हैं तो बढ़ाइए अपने कदम, मंजिल इंतजार कर रही है। और अब रफी साहब की मखमली आवाज के साथ लता जी के मधुर स्वर में सुनते हैं फिल्म अनजाना का ये मधुर गीत।

सखियों, गीत हमने सुन लिया और हमें पता है आप गुनगुना भी रही थी। चलिए अब जरूरी बात करते हैं। जी हाँ, साइबर सेल के विषय में आपने सुना ही होगा। जी हाँ, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते डिजिटल अपराधों जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए साइबर सेल बहुत उपयोगी और आवश्यक व्यवस्था है। सखियों, यह महिलाओं को सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करने में कई तरीकों से मदद करती है। जी हाँ, अश्लील संदेश, सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल या धमकी भरे कॉल की तत्काल जांच करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करती है। यदि कोई महिला अपनी पहचान उजागर किए बिना ऑनलाइन उत्पीड़न या अश्लील सामग्री की शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो वो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर गुमनाम रूप से शिकायत कर सकती है। सोशल मीडिया, ईमेल या मैसेजिंग ऐप के जरिए परेशान करने वालों का आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रैक करके साइबर सेल उन्हें पकड़ती है। तत्काल मदद के लिए सखियों, हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें। राष्ट्रीय महिला आयोग व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 7827170170 और महिला हेल्पलाइन नंबर है 181। इसके साथ ही पुलिस सहायता नंबर है 1091। तो आवश्यकता पड़ने पर इन नंबरों से आप सहायता ले सकती हैं। और अब हम करते हैं बात स्मार्ट किचन टिप्स की। जी हाँ सखियों, किचन में अगर आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करेंगी तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ स्मार्ट किचन हैक्स जिनकी मदद से आप अपने काम आसानी से यानी कि स्मार्टली कर सकती हैं और ख़ुद के लिए मी टाइम भी निकाल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेवी की। जी हाँ सखियों, किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें। चीनी कैरमलाइज होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी यानी कि टेस्ट भी दुगना कर देगी। और अब बात करते हैं गर्मा गर्म पूड़ियों की। पूड़ियों को बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, इससे वो फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल नहीं सोखेंगी। इसी तरह सखियों, सूजी का हलवा अगर आप बना रही हैं, बनाना चाहती हैं, तो सूजी को हलवे के लिए भूनते वक्त इसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला लें। इससे हलवे का स्वाद दुगना हो जाएगा और बहुत ही सौंधा सौंधा जो है हलवा लगेगा। अब हम बात करते हैं प्लेन मेयोनीज में हरी चटनी या टोमेटो चिली सॉस या चॉप

किया हुआ धनिया पुदीना मिलाकर बिल्कुल नए स्वाद वाला डीप या स्प्रेड आप तैयार कर सकती है। परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू को काटकर उन्हें 2-3 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। पानी से निकाल कर उन्हें किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर फैला दें, जिससे इनका सारा पानी सूख जाए। अब इन्हें कॉर्नफ्लावर से डस्ट करके जिप लॉक बैग या एयरटाइट डिब्बे में बंद करके फ्रीजर में रख दें और ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर तुरंत फ्राई करें और अपने परिवार के सदस्यों को खुश कर दें। और चलिए अब हम आपको खुश करते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा मधुर गीत।

सखियों, मन तो कर रहा है आपसे ढेर सारी बातें की जाए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। अब दुर्गेश नंदनी को दें अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है राम कुमार प्रजापति और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम कुमार प्रजापति और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है योगेंद्र कुमार द्वारा गाए गीत। प्रस्तुत है एक ठुमरी गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे योगेंद्र कुमार द्वारा गाए ठुमरी और दादरा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए,
2: या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं?
1: क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही हैं?
2: अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नापुरम गोल्ड लोन के साथ।
1: आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो।
2: कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800420223।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए,
2: या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं?
1: क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही हैं?
2: अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नापुरम गोल्ड लोन के साथ।
1: आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो।
2: कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800420223।

शांतनु मोहित्रा का संगीत स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल, शान और शांतनु मोहित्रा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म थ्री इडियट से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म बिल्लू से, आवाज़ है सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कड़ और मुनाली ठाकुर की।

0: लिखे बोल, सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कड़ और मोनाली ठाकुर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बिल्लू से। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा निर्मित किया गया है। 5,600 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर से शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूह के क्षमतावर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। वे करीब 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 109 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के निर्दोष शहीदों को न्याय दिलाने के लिए अदम्य साहस, धैर्य और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान को लगातार अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। इस अभियान के तहत बालाघाट पुलिस को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सम्मानित किया है। जिले के 1,204 स्कूलों के 1,25,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति की शपथ ली, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन इस अभियान में भाग लिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों से इस अभियान से जुड़कर नशा मुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम भारत की खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं करता है। इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और किसानों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करना है। भारतीय खाद्य निगम के चावल का एथेनॉल उत्पादन में उपयोग किए जाने के संबंध में हालिया दावों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा दायित्वों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में अति भारी बारिश तथा नीमच, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने जिले में सड़क सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा और दुर्घटना घटाने के उपायों पर चर्चा की। आगरमालवा कलेक्टर ने नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी देवी लोक निर्माण के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए हर घर जल योजना के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता में पूरे करने के निर्देश दिए। जबलपुर जिले में ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत जांच दल बिना पूर्व सूचना के पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता की सघन जांच करेंगे। प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब भवन निर्माण से जुड़े अधिकांश मामलों में कई विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। और प्रदेश से हज 2027 के लिए 5,998 यात्रियों का चयन किया गया है। प्रदेश से 10,058 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
1: पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में। फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के

0: दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
2: सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
3: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
4: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, सीबीआई जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों?

0: हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
1: आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल छनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
2: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसटीआरएफ की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर।

0: और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। इस कार्यक्रम में हम आपके पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपके पसंदीदा नगमे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेटा फिल्म के गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की तरफ से। बरेली कैंट रेलवे कैबिन के पास शनिहट्टी बरेली से हमें लिखा है विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए, ये प्रस्तुत है बेटा फिल्म का ये गीत।

आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के लिखे बोल, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बेटा से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में फिल्म सौदागर से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। ग्राम जसवाड़ी से हमें लिखा है दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढकसे ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी और प्रकाशवीर राजपूत, डूंडी लोहारा बलोद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, और जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आरडी बर्मन का संगीत गुलजार के लिखे बोल, वनिता मिश्रा, गुरप्रीत कौर और गौरी बापट की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मासूम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आराधना और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है पाकुड़ झारखंड से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्नव आनंद और सत्यम आनंद की ओर से। इसके अलावा एक पत्र मिला है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, अभयानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की तरफ से। सपना संगीता रोड इंदौर से लिखा है लीला फतेह चंदानी, लाल फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

एस डी बर्मन का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म आराधना से। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में हीर रांझा से आपको सुनवा रहे हैं, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की ओर से। इसके अलावा हमें पत्र मिला है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक का, मोपका भाटापारा से भवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू का, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर और प्रणीता गवाड़कर की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: मदन मोहन का संगीत कैफ़ी आज़मी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हीर रांझा से। और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इसी तरह अपने पत्रों को भेजते रहिए और अपनी फरमाइशें करते रहिए। इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले के थानला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूह के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के निर्दोष शहीदों को न्याय दिलाने के लिए अदम्य साहस, धैर्य और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान को लगातार अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। इस अभियान के तहत बालाघाट पुलिस को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सम्मानित किया है। जिले के 1204 स्कूलों के 125,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति की शपथ ली। और सरकार ने स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम भारत की खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं करता है। इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और किसानों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर सुन सकेंगे ये कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा प्रसारित होगी रात 8 बजे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में सुन सकेंगे रात 8:15 पर। कार्यक्रम खेल जगत सुनिएगा आज रात 9:30 पर। और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी आज रात 10 बजे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

हेलो। हाँ, फ्लिक मिल गई मुझे, साइट से दिख गई है। इधर अंदर घड़ी में समय हो रहा है 4:27 और 30 सेकंड। हाँ, समय हुआ है 4:27 और 40 सेकंड।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के 5 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी।
1: और मैं हूं श्रद्धा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 31 जुलाई और शुक्रवार, और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं साप्ताहिक खेल और विज्ञान गतिविधियां। साथ ही आज हम आपसे बात करेंगे ढेर सारी रोचक व्यक्तित्वों के बारे में और देंगे उनसे ही जुड़ी

0: ढेर सारी जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले हमारा रोजाना का क्रम यानी कि आज के दो प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं।
1: तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि पृथ्वी की कौन सी परत ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है।
0: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि एक क्रिकेट पिच पर दोनों तरफ के विकेटों के बीच की सटीक दूरी कितनी होती है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढकर तैयार रखिए और कार्यक्रम के अंत में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तो दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं भारत के उस वीर क्रांतिकारी को जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। आज बात होने वाली है शहीद उधम सिंह जी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है।
2: माधवी, उधम सिंह का नाम लेते ही साहस, देशभक्ति और न्याय के लिए लड़ने की भावना मन में आती है ना?
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। उनकी कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 से। उस दिन बैसाखी का पर्व था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। कोई सभा में आया था तो कोई मेले के लिए आया था। वहां महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब ही मौजूद थे।
2: लेकिन तभी ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग के दरवाजे बंद थे, इसीलिए लोग बाहर भी नहीं निकल पाए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी उनकी मौत हो गई और कुछ ही मिनटों में पूरा जलियांवाला बाग चीख पुकार और लाशों से भर गया।
1: कहा जाता है कि उस समय युवा उधम सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मासूम लोगों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उस दर्दनाक घटना ने उनके दिल पर ऐसा घाव छोड़ दिया था जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि इस नरसंहार की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, उनके अपराध की सजा उन्हें जरूर दिलाएंगे।
2: इसके बाद कई वर्षों तक उधम सिंह अलग अलग देशों में रहे। वे गुप्त रूप से क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे और सही समय का इंतजार करते रहे। आखिरकार साल 1940 में वे इंग्लैंड पहुंचे।
1: 13 मार्च 1940 को लंदन के एक हॉल में एक सभा चल रही थी, जहां पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल भी मौजूद थे। और उधम सिंह जानते थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समर्थन किस किस लोगों ने दिया था, और उनमें से एक ये भी थे। इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने उस पर गोलियां चलाई और वहीं उनकी मौत हो गई।
2: घटना के बाद उधम सिंह भागे नहीं, उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बेखौफ होकर कहा कि उन्होंने ये काम अपने देश और उन बेगुनाह लोगों के लिए किया है जिनकी जान जलियांवाला बाग में गई थी। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था।
1: अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ते समय भी उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, भारत की आज़ादी।
2: दोस्तों, आज उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस ही सच्ची देशभक्ति है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा।
1: आइए

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आज 31 जुलाई है, यानी हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है। तो आइए उनके जीवन और साहित्यिक सफ़र को थोड़ा याद कर लेते हैं।
3: बिल्कुल माधवी। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए समाज की सच्चाई को बेहद ही सरल भाषा में लोगों तक पहुँचाया है।
2: उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता अजायब लाल डाक विभाग में क्लर्क थे और माँ आनंदी देवी एक गृहिणी थी।
3: लेकिन उनका बचपन बहुत संघर्षों से भरा रहा। जब वे सिर्फ 8 साल के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया और कुछ साल बाद उनके पिता भी चल बसे और इसके बाद कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी।
2: उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वे किताबें लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चले जाते थे। यहीं पढ़ने की जो आदत थी वो धीरे धीरे उनको लेखन की दुनिया में ले आई।
3: उन्होंने शुरुआत उर्दू भाषा से की। वे नवाब राय नाम से लिखते थे और उनकी पहली पुस्तक सोजे वतन साल 1907 में प्रकाशित हुई और इसमें देशभक्ति से जुड़ी कहानियां थी।
2: लेकिन उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। अंग्रेज सरकार को यह किताब पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इसकी कहानी लोगों में आजादी की भावना जगा रही है, इसलिए इसकी प्रतियां जितनी भी थी जब्त कर ली गई और प्रेमचंद को इस नाम से लिखने से मना कर दिया गया।
3: इसके बाद उन्होंने नया नाम प्रेमचंद अपनाया। यही नाम आगे चलकर भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा नाम बन गया। उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और उनकी रचनाएं तेजी से लोग

0: लोगों तक पहुंचने लगी।
1: उनकी शुरुआती चर्चित कहानियों में थी पंच परमेश्वर। इसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह कहानी 1916 के में प्रकाशित हुई थी। गांव की पृष्ठभूमि और न्याय का संदेश देने वाली इस कहानी ने पाठकों का दिल जीत लिया था। यहीं से प्रेमचंद एक लोकप्रिय लेखक बन गए।
0: इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन।
1: और अगर कहानियों की बात की जाए तो ईदगाह, कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, ठाकुरों का कुआं और बड़े घर की बेटी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी उनके समय में रहा करती थी।
0: माधवी, मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने ना आम लोगों को अपनी कहानियों का नायक बना दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे और वो गांव के लोग, ये सभी उनके साहित्य के केंद्र में रहे।
1: ये बात तो तुमने एकदम सही कही है। उनकी भाषा भी बहुत आसान थी। वे कठिन शब्दों की जगह रोज़मर्रा की भाषा का इस्तेमाल करते थे। शायद यही वजह थी कि आज भी स्कूल्स में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती है और हर उम्र के पाठक उनसे जुड़ जाते हैं। उनके निधन के बाद उन्हें हिंदी साहित्य के सबसे महान लेखकों में गिना जाने लगा।
0: दोस्तों, उनकी कहानियों की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन पर कई फिल्में और टीवी धारावाहिक भी बने हैं। महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी और सदगति पर यादगार फिल्में बनाई। वहीं गोदान, गबन, निर्मला और सेवा सदन पर भी फिल्में और धारावाहिक बनाए गए हैं। दोस्तों, जीवन के अंतिम दिनों में लगातार काम और खराब स्वास्थ्य के कारण वे काफ़ी बीमार रहने लगे। आखिरकार 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र केवल 56 वर्ष थी।
1: लेकिन किसी लेखक की पहचान उसकी उम्र से नहीं की जाती, उसकी रचनाओं से होती है। प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी हमें इंसानियत, ईमानदारी और समाज की सच्चाइयों को समझने की सीख देती है।
0: यही कारण है कि मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं बल्कि भारतीय समाज की आवाज़ माने जाते हैं। उनकी कलम आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 100 साल पहले थी।
1: मुंशी प्रेमचंद हमारे बचपन की किताबों से लेकर आज भी अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे साथ जीवंत हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं होता, बल्कि जुनून, अनुशासन और देश का गौरव भी होता है।
3: आज हम आपको लेकर चलेंगे खेलों की दुनिया में, जहां हर दिन कोई नया रिकॉर्ड बनता है, कोई नया सितारा उभरता है और कोई नई प्रेरणादायक कहानी जन्म लेती है।
2: श्रद्धा, अगर इस समय खेल जगत की बात करें तो भारत और दुनिया दोनों जगह काफी हलचल देखने को मिल रही है।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों, इन दिनों ग्लासगो, स्कॉटलैंड और इन दोनों जगह पर ना राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आयोजित हो रहे हैं, जिसमें भारत के खिलाड़ी भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, जूडो, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को पदक

0: पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं।
1: यही तो भारत के खेलों की सबसे बड़ी ताकत है। पहले जहां कुछ चुनिंदा खेलों तक ही हमारी पहचान थी, वहीं आज भारत कई खेलों में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है।
0: बिल्कुल, सरकार खेल संस्थाओं और निजी क्षेत्र के सहयोग से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभागिताओं में भाग लेने के लिए अधिक अवसर मिल रहे हैं। इसी दिशा में भारत के खेल ढांचे और खेल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए प्रयास भी किए जा रहे हैं।
1: क्रिकेट की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम लगातार अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर व्यस्त है। पुरुष और महिला दोनों टीमें विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और युवा खिलाड़ियों को भी लगातार अवसर मिल रहे हैं।
0: और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बैडमिंटन, शतरंज, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, शूटिंग और कुश्ती जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
1: मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अब छोटे छोटे शहरों और गांव से भी खिलाड़ी निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, आज प्रतिभा सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। बेहतर खेल अकेडमियाँ या फिर वैज्ञानिक प्रशिक्षण और डिजिटल तकनीक ने हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी तक अवसर पहुंचाने का काम कर दिया है।
1: दुनिया की बात करें तो फुटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स और तैराकी जैसी प्रतियोगिताएं भी लगातार खेल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। आने वाले महीनों में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स भी आयोजित किए जाने वाले हैं।
0: और दोस्तों, खेलों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो देशों को जोड़ते हैं। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद भी खिलाड़ी खेल भावना के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही बात कही तुमने। खेल हमें टीम वर्क, अनुशासन, धैर्य और हार के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ना सिखाता है।
0: और दोस्तों, आज के युवाओं के लिए भी खेल बहुत जरूरी है। नियमित खेल गतिविधियां न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि मानसिक तनाव कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। इसीलिए खेल हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

0: तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, और ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब हम जो आगे बातचीत करने जा रहे हैं ना दोस्तों, ये भारत और दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही कुछ महत्वपूर्ण प्रगतियों की बात है, जो भविष्य की दुनिया को आकार देने वाली है।
0: श्रद्धा, अगर भारत की बात करें तो अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी उपलब्धियां लगातार बढ़ती जा रही है। चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि सीमित साधनों में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजना है, और इसके लिए कई परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।
0: और यही नहीं, भारत मौसम का पूर्व अनुमान, सैटेलाइट संचार, कृषि, आपदा प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में भी अंतरिक्ष तकनीक का प्रभावी उपयोग कर रहा है।
1: बिल्कुल, आज सैटेलाइट तकनीक की मदद से चक्रवातों की निगरानी, बाढ़ की चेतावनी, फसलों का आकलन और दूर दराज क्षेत्रों में संचार सेवाएं पहुँचाने तक की सारी सुविधाएं बहुत ही आसानी से पहुँच पा रही है।
0: अगर दुनिया की बात करें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान का सबसे चर्चित विषय के बारे में भी बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अनुसंधान हो, परिवहन हो, उद्योग, लगभग हर क्षेत्र में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। वैज्ञानिक AI की मदद से नई दवाओं की खोज कर रहे हैं, मौसम का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा पा रहा है, जटिल वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।
0: चिकित्सा विज्ञान में भी लगातार नई उपलब्धियां सामने आई हैं। रोबोटिक सर्जरी, जीन अनुसंधान, आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर्स और बहुत सारी ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो अधिक से अधिक प्रभावी बनती जा रही हैं।
1: और अब दूर दराज क्षेत्रों के लोग भी ऑनलाइन डॉक्टरों से सलाह लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। विज्ञान सचमुच जीवन को सरल बना रहा है।
0: यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के नए स्रोतों का शोध करना और तेजी से आगे बढ़ रहा है,
1: क्योंकि पूरी दुनिया अब जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है,
0: और भारत कहीं पीछे नहीं है। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन हो, ग्रीन एनर्जी हो, स्मार्ट शहर या फिर डिजिटल तकनीक का विस्तार, हर विषय में भारत की नई तस्वीर आगे आ रही है।
1: और एक और दिलचस्प बात यह है कि आज भारतीय वैज्ञानिक केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हमें सवाल पूछना सिखाता है, और जिज्ञासा से खोज होती है और खोज से होता है विकास।
1: और यही सोच आने वाली पीढ़ी को अपनानी होगी। सिर्फ तकनीक का उपयोग ही नहीं बल्कि उसके पीछे के विज्ञान को समझना भी उतना ही जरूरी है।

0: तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इस महान पार्श्व गायक को आज हम याद कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। आज पुण्यतिथि है मोहम्मद रफ़ी जी की।
1: मोहम्मद रफ़ी जी सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आवाज़ थे जिसने हर भाव को अपने गीतों में जीवंत कर दिया। चाहे भजन हो, गज़ल हो, देशभक्ति गीत, कव्वाली, रोमांटिक गीत या फिर मस्ती भरे गाने, उन्होंने हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई है।
0: मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला गांव में, जो आज पाकिस्तान में है। बचपन में उनका परिवार लाहौर में रहने लगा। कहते हैं कि रफ़ी साहब को संगीत की प्रेरणा एक फ़कीर से मिली थी, जो रोज़ गाते हुए उनकी गली से गुजरता था। छोटी उम्र में वो ही इस फ़कीर की आवाज़ की नकल करने लग गए थे।
1: और उनके बड़े भाई ने उनकी गायकी को

0: बोनी कपूर, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र जैसे कलाकारों पर फिल्माए गए उनके गीत आज भी याद किए जाते हैं।
1: अब अगर गीतों की बात हो ही रही है तो उनके प्रसिद्ध गीतों की बात भी कर लेते हैं। तो चौदहवीं का चांद हो, बहारों फूल बरसाओ, ये रेशमी जुल्फें, क्या हुआ तेरा वादा, मन तड़पन, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, और कर चले हम फिदा, जैसे अनगिनत गीत आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। अब श्रद्धा, हमने इतने सारे गीतों की बात कर ही ली है, तो क्यों ना हमारे दोस्तों को भी ये गीत सुना दिए जाएं?
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आज के दो प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ साझा कर देते हैं।
1: तो जो हमारा पहला प्रश्न था वो ये था कि पृथ्वी की कौन सी परत मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है। तो इसका जवाब है बाहरी कोर यानी कि आउटर कोर।
0: और आज का दूसरा प्रश्न था कि एक क्रिकेट पिच पर दोनों तरफ के विकेटों के बीच की सटीक दूरी कितनी होती है, और इसका जवाब है 22 गज यानी कि 22 यार्ड्स या 66 फीट।
1: तो साथियों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी,
0: और मैं हूँ श्रद्धा।
1: नमस्कार।

इस गीत के साथ ही माफ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं धड़कन फिल्म का गीत। स्वर हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के, बोल हैं समीर के और धुन है नदीम श्रवण की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत। स्वर हैं अमित कुमार और उदित नारायण के, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से

0: योगेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
0: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
0: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
0: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए
0: जी।
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
0: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
0: जी।
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
0: जी।
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
0: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
0: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
0: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल वट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य

0: दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
1: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
0: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
1: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं, विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें, विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
0: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी बेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
4: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं,

0: और उनका श्रृंगार भी अनोखा है। लेकिन गुरुदेव, हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
1: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
0: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना, और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
1: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
0: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें। लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो? हैं देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
3: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
7: लयात्मक प्रस्तुति।
6: शीर्षक है
7: अभी न होगा मेरा अंत।
6: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हमारी कलाकार हैं शोभा पाठक। तो आइए सुनते हैं उनके स्वर में

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत और आज हमारी कलाकार हैं शोभा पाठक। तो आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में अब ये गीत।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत और कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है शोभा पाठक के ही स्वर में, आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में शोभा पाठक को। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

0: इसी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 24,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रिड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। भोपाल से रिले होंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनिएगा 7:20 पर। दिल्ली से रिले होगी संसद समीक्षा 8:00। सुर्खियों में भोपाल से रिले होगा 8:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम 8:30 पर सुनिएगा। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन होगा 9:30 पे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 10:30 पर होगा। कार्यक्रम में सुनेगा पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज को। राग होगा यमन कल्याण। ये थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। कल यानी 1 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना सुनिएगा 6:05 पर। चिंतन सुन सकेंगे 6:30 पर। मानसून में नए बाग बगीचे लगाना जानेंगे खेती की बातें में 6:35 पर। सदाबहार फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुनहरे पल 7:20 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और उनके साथी। ये कार्यक्रम होगा 9:00। सुगम संगीत में कलाकार होंगे अहमद रजा पप्पन और उनके साथी। कार्यक्रम होगा 9:15।

0: पर। शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा सरोज वादन पंडित ब्रज नारायण का, राग होगा मुल्तानी। कार्यक्रम होगा 9:30 पर। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने, ये फोन इन कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 11:00। दोपहर 12:00 और 2:00 कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम भोपाल से रिले किया जाएगा। भोपाल से ही रिले किया जाएगा संग्रहालय से 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुन सकेंगे 1:00, ये कार्यक्रम भी भोपाल से रिले होगा। लोक संगीत का कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 1:30 पर। 1:45 पर भोपाल से रिले होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 2:30 पर, ये कार्यक्रम भी भोपाल से ही रिले किया जाएगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:00, 5:45 पर, और रात 8:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। शाम 6:00 सुनिएगा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत, कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा भेंटवार्ता, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में एग्रीवोल्टेक प्रणाली पर डॉक्टर दीपक हरिरांडे जी की बातचीत राजेश पाठक जी के साथ। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 6:30 पर, कलाकार होंगे अहमद रजा पप्पन और उनके साथी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और उनके साथियों को 6:45 पर। पर्यावरण पर चर्चा और लोक संगीत सुनिएगा 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा 7:30 पर। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस सप्ताह संसद में दिल्ली से रिले होगा 8:00, भोपाल से रिले होगा 8:15 पर। सुर्खियों में चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। दिल्ली से रिले होगा राष्ट्रीय साहित्य भारती पत्रिका रात 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली से रिले होगा रात 10:00। ये थे कल की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब कार्यक्रम भोपाल।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ में स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय ऑफशोर एक्सप्लोरेशन योजना को भी स्वीकृति दी। इस योजना पर 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा निर्मित किया गया है। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूहों के क्षमतावर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों और महिला स्वसहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उनके उत्पादों की सराहना की। उन्होंने चयनित दिव्यांगजनों को मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें भी भेंट की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए किसानों से संवाद किया तथा विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए।
1: हमारे इसी थांदला में पक्का हेलीपैड बनाया जाएगा। अपने इसी थांदला के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने वाले खिलाड़ियों के लिए हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और पद्मावती नदी पर घाट भी बनाया जाएगा। अभी पट्टे जो दिए गए इन पट्टों की पक्की रजिस्ट्री भी निशुल्क आपके लिए कराई जाएगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की और एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर के नवाचार समाज की जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत रचनात्मकता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी शामिल होती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाले नवप्रवर्तकों के प्रयासों की सराहना भी की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। धार में ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पीछे निर्धारित स्थान पर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के बीच बनी सहमति के अनुसार की गई। नमाज के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और बारिश के कारण गीली जमीन पर तिरपाल भी बिछाई गई। इससे पहले कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन को निजी बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर प्रशासन ने उनकी बात सुनने का आश्वासन दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार प्रदेश में कुल 5,67,21,353 मतदाता हैं, जिनमें 1,60,50,984 शहरी और 4,06,70,369 ग्रामीण मतदाता शामिल हैं। आयोग ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में इसी अंतिम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सीमा कालीरमन और पुरुषों की 110 किलोग्राम से अधिक भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवप्रीत सिंह को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रभावी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों के एम्पैनलमेंट की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक योग्य स्वास्थ्य संस्थानों को इस योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड अस्पतालों के क्लेम का भुगतान निर्धारित समय सीमा में किया जाए। पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत का आज निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। पंत दादा के नाम से प्रसिद्ध कैलाश चंद्र पंत ने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के लिए समर्पित किया। भोपाल के हिंदी भवन को साकार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और साहित्यकारों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस वर्ष उन्हें हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में अति भारी बारिश तथा नीमच, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कोलारस में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संवाद योजना के तहत प्रस्फुटन समितियों के विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया। शहडोल में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत हाट बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निवाड़ी और जबलपुर में 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रों का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। नीमच के ग्राम बमोरी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आयुष विभाग द्वारा कल निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के शासकीय एमएलबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल ने उल्लास एक अभिनव प्रयास अभियान के तहत पौधरोपण किया। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बैठक लेकर कृषि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर पात्र किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। आगरमालवा के सुसनेर जनपद पंचायत में कल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत होगी। गुना जिले के नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त रखी गई है। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मिर्दाखेड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र में सुक्ता और आवना नदी के बीच स्थित हाथीकुंड टापू पर फंसे 4 युवकों को SDERF की टीम ने 10.5 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झाबुआ में स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी सुनने वाला सगलाच किसान भाई बहन ने नाना नानी होण के धरणीधर मिश्र की राम राम राम राम भाई सबके राम राम। आओ भाई आओ बैठो न सुनाओ कैसा कहीं हाल चाल है। हाल चाल तो सब मजे में, घर में भी मौज, न खेती बाड़ी का काम काज तो चल ही रहा है। बुआई भी हुई गई भाई आप तो, है ना, कितनी जगह न बुआई के बाद में यूँ देखने में आवा कि खरपतवार की भी एक समस्या रहे कभी कभी अपने यहाँ, है नहीं तो खरपतवार शुरू कहीं करा अपन सबके मालूम है वैसे तो। एक तो अपना हाथ से अपन निंदाई गुड़ाई कर सका, है ना, खुरपी से अपन कर सका नहीं, जैसे बुआई हो गई उनका 25-30

0: दिन बाद अपन हाथ से भी कर सका, न मल्चिंग करके कर सका है नी, न दूसरों कहीं कभी रासायनिक विधि से करने की जरूरत पड़ जाए तो वो भी हम सब किसान भाई उनके मालूम है, जैसे पेंडी मेथिलीन जैसे सारी की बहुत सारी दवा ना है, उनका अपन बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर सका। तो इन हिसाब से अगर अपन करेंगे तो खरपतवार को नियंत्रण होएगा। कई लोग भाई लोग कीटना को प्रयोग करे, प्राकृतिक उपायों का उपयोग करे, न कितना ही प्रगतिशील किसान भाई लोग फसल चक्र अपनाएं, फसल चक्र अपनाने से भी अपने खरपतवार से नियंत्रण मिल सके। न पंप दवाई का भी उपयोग करो भैया, तो एक बात को खास ध्यान रखना कि जितनी दवाई बताई है उतनी दवाई से ज़्यादा नहीं नाखनी अपने, उसमें बहुत नुकसान हो सके फसल के भी न मानव शरीर के भी। जैसे भी बताए पंप में उन्हें हिसाब से दवाई रखनो, उन्हें हिसाब से पानी रखनो, न उन्हें हिसाब से अपने छिड़काव करनो। तो बात तो भाई साहब और भाई लोग अपन और भी करेंगे है नी, पर अभी सुना ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भाई लोग चौपाल की शुरुआत में अभी अपन सुनूंगा माया देवी पटेल ना उनकी मंडली को गायो ये लोकगीत सुना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई लोग, संदेश का पहला अभी अपन ने सुनियो ये लोकगीत। माया देवी पटेल ने उनकी मंडली को गायो लोकगीत थो बरसन लाग्यो मेघ। आनंद आई गयो भैया, मौसम भी ऐसा चल रहा है, बरस ही रहा है कदी कदी कहीं ना कहीं सब जगह न भाई। अब चौपाल पे एक खास बात आज करेंगे अपन, वह है मेघ यानी पानी का बारे में। अपने देखे अपन ने कितनी जगह पानी बरस रही हो और कितनी जगह नहीं बरस रही हो, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है ना। तो उन हिसाब से हमारा किसान भाइयों स्वरूप कोई अपने एक विशेषज्ञ की जानकारी भी जरूरी चाहिए भैया। तो हमने बात करी भैया, हमने टेलीफोन लगायो एक भूजल वैज्ञानिक है डॉक्टर सुधींद्र मोहन जी शर्मा, जो है ना वे भारत सरकार का जो मंत्रालय था उसमें बड़ा अधिकारी रहा न, अभी भी बहुत सारी समितियाँ से जुड़े हुए हैं। तो उनसे हमने हम किसान भाई अनुसार बहुत सारी उपयोगी जानकारी भी ली। तो सुना भाई वह जानकारी।
3: हेलो जी, नमस्कार।
4: नमस्कार, सुधींद्र मोहन जी शर्मा साहब बोल रही है ना?
3: जी बोल रही हूँ।
4: अरे वाह साहब, राम राम साहब।
3: राम राम। राम राम, कैसा हो आप?
4: बस भाई साहब अच्छा। हम आकाशवाणी इंदौर से हूँ, धरणीधर मिश्र बोल रही हूँ खेती गृहस्थी कार्यक्रम से।
3: अरे वाह, बहुत अच्छे लोग आपको फोन आयो।
4: अरे वाह साहब, बढ़िया। ये तो हमारा भाग्य आपसे मुलाकात हुई गई भाई।
3: जी जी,
4: अभी कई बात है कि इन्हीं बखत में अपने देखो हो कि मौसम विज्ञान की भी भविष्यवाणी है कि पानी रुक रुक के आई रही हो ना, कम आएगा। तो इसी बखत में हम सबके चिंता हो गई भाई, अपने किसान भाई उनको तो सारो दानो दारोमदार ही पे है।
3: जी जी जी बिल्कुल,
4: पानी कम आए न, पानी कम बखत बखत पे आए नहीं तो अपना भूजल को पानी भी कम हो जाएगा,
3: भूजल को कम हो जाएगा, भूजल को दोहन भी बढ़ेगा।
4: हाँ, यह बात भी है,
3: क्योंकि जन लोगों ने बोनी कर दी है उनके पानी की जरूरत पड़ेगी।
4: हाँ,
3: तो पानी नहीं है तो कहीं करांगा, फिर ऊपर से नहीं गिरे तो जमीन से निकालो।
4: तो वही तो हमके ऐसी चिंता तो हुई, तो हमने कहा भाई जो अपना भारत सरकार में जो खास अपना पेयजल मंत्रालय में पेयजल सुरक्षा अधिकारी या मुख्य अधिकारी सुधींद्र मोहन जी शर्मा साहब, यानी आपके सबसे पहला हम आपके संपर्क करा।
3: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
4: हमारा किसान भाई उनके भी बड़ा आपको अनुभव को लाभ मिलेगा।
3: जी जी जी बिल्कुल, मैं इंदौर कोच हूँ, मालवी थोड़ी बहुत बोली सकूँ।
4: अरे
3: थोड़ी घनी है, थोड़ी बहुत,
4: अरे
3: ज्यादा तो नहीं। तो
4: आनंद आएगा भाई, भाई साहब आप तो
3: जी जी,
4: तो आप हमारा किसान भाई स्वरूप ये बताओ, जैसे आप विषय यही आज को खास अपनो
3: जी,
4: अभी बारिश कम हो रही है न, रुक रुक के हो रही है।

0: पूरा मालवा निर्माण मैंने सब जगह की एक खबर है
1: जी जी जी जी।
0: तो इन्हीं वक्त में कि आपकी कहीं सलाह रहेगी किसान भाई अनुसार।
1: देखिए अभी जब बारिश रुक रुक के हो रही है तो हमको ये भी देखना है कि हमारी फसलों को भी बचा लें और हमारी भूजल को भी बचा लें, क्योंकि मैंने अभी बात की कि जब बारिश रुक के होगी तो हमको भूजल दोहन करना पड़ेगा, तो हमको भूजल दोहन इतना ही करना है जितना जरूरत हो एक तो, दूसरा ज्यादा मात्रा में जो अपन खेत को पानी पिलाई दा पूरी पूरी सरी भर के पिलाई दा उसकी जरूरत नहीं है अभी।
0: अच्छा,
1: तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी मिट्टी अपनी मिट्टी में नमी बहुत है, तो ऊपर ऊपर सूखी दिखे लेकिन नीचे मिट्टी में नमी है, तो बहुत ज्यादा भरभरी ने पानी नहीं पिलानो अपने, जितनी जरूरत लगे उतना ही देना है पानी। जरूरी नहीं है कि जैसे अपन गेहूं के पिलाए ऐसा नहीं पिलानो अपने को, गेहूं के ज्यादा पिलाओ अपन, लेकिन अभी जो सोयाबीन में देनो है उसमें आपको बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा। तो एक तो काम हमको ये करना है कि उस पर नियंत्रण रखें, अपना अपना कंट्रोल रखें कि भाई अपने जितना जरूरत है उतना ही पानी दें।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी बताई साहब। तो कहीं हो कि आपने मालूम नहीं कि नमी है और अपन ऊपर से पानी नाखी था।
1: ऊपर से पानी नाखी था तो पानी को कोई उपयोग तो हो ही नहीं, वो रूट जोन में जड़ों में तो जाए नहीं और वो भाप बनके ने उड़ी जाए, क्योंकि धूप पड़ी रही बढ़िया, पानी आ ही नहीं रही, पड़ी रही है तो भाप बनके उड़ी जाएगा, तो अपने काम नहीं आएगा वो पानी। अपने को वही करना है जो पानी अपने काम आवे, नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज को ध्यान रखना है कि इस बार चूंकि बारिश कम हुई रही है तो रिचार्ज तो कम होएगा ही होएगा, ये तो पक्की बात है। अपना भूजल बोरवेल में भूजल में वर्षा का जल जाने का समय अपने पास उतना है नहीं अभी, तो हमको वर्षा जल कम जाएगा भूजल में तो रिचार्ज तो कम होगा ही होगा। लेकिन एक और कारण भी है कि जब कम बारिश होती है तो पानी बह के आपके नदी नालों तक भी नहीं पहुंच पाता है। जैसे बारिश गिरी और धीरे गिरी मान लो, या थोड़े थोड़े अंतराल से गिरी, तो मिट्टी पानी को बहने नहीं देती है, पहले नीचे चला जाता है पानी फिर बहना शुरू होता है, तो हमारे नदी नालों में भी पानी नहीं आने वाला है ज्यादा। ये भी चिंता की बात है, इसका भी हमको ध्यान रखना है कि जब नदी नालों में पानी नहीं आ रहा है, हमारा भूजल में रिचार्ज कम हो रहा है, तो हमको भूजल का अगले साल अक्टूबर के बाद में बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमको अभी तो ख्याल रखना ही है, बाद के लिए भी प्लानिंग अभी से करनी है। तो बाद में जो फसलें अपने को लगानी है वो ऐसी फसलें लगाएं जिसमें इस साल अपने को पानी की ज्यादा जरूरत ना पड़े। कई बार क्या होता है कि हम पिछले साल के अनुभव के आधार पर ऐसी फसल लगा लेते हैं, जैसे कोई गेहूं है जिसमें 7 पानी लगता है, हमेशा लगता है, हमेशा अपने पानी रहता है, तो अपन लगा भी लेते हैं।
0: लेकिन
1: इस बार की स्थिति को देख के हमको वो बदलना पड़ेगा और ऐसा गेहूं लगाना पड़ेगा जिसमें 3 या 4 पानी से अपना काम हो जाए, ताकि भूजल हमारे लिए गर्मियों के लिए सुरक्षित रहे। गर्मियों के लिए भूजल बचाना बहुत जरूरी है इस बार गर्मियों में, क्योंकि यही भूजल है जो आपके खेतों में काम देता है, वही भूजल आपको पीने का पानी भी देता है
0: ना। अपने ढोडांगर सरू भी लगे,
1: तो वो भी पानी आपको बचा के रखना है। तो आपको फसलों में इस बार कम पानी का उपयोग करना है, ये भी समझ लो आप। अच्छा। कि इस बार अपने को थोड़ा अपने गाँव का बजट बनाना पड़ेगा पानी का, कि भाई हम फसल ऐसी लगाएंगे और ये सब लोग मिलके अपन नक्की कर सका, सब लोग मिलके नक्की करो कि भाई अपन पूरा पूरा पूरा गांव में ऐसा करांगा अब की बार अपन, तो गांव समाज को निर्णय रहेगा तो सब पालन करेगा उसका।
0: यह बात है,
1: तो कोई ऊपर से कोई आदेश आने की जरूरत नहीं है इसमें, किसान के शासन कोई आदेश लाएगा और तभी अपन पालन कराएंगे, ऐसा नहीं। अपना गांव समाज का निर्णय करके ना अपन खुद ही निर्णय कर सका, क्यों नहीं करा, तो वो करा अपन कि भाई हमको इस बार पानी की बचत करनी है, और वो पानी की बचत होली बाद में शुरू होगी, वो पानी की बचत अभी दिवाली से शुरू करनी है अपने। हर बार अपन पानी की बचत करना शुरू करा होली में, पानी कम होएगा इस बार दिवाली से शुरू करनी है अपने, कि भाई पानी अपने को नहीं बिगाड़नो और ये बचा के रखना अगली बारिश तक।
0: या तो बहुत काम की बात बताइए, अभी से अपने चिंता है रखनी पड़ेगी,
1: अभी से चिंता रखनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे गाँव है ना जहाँ पे पानी अभी अच्छा है, बारिश नहीं हुई रही है तो भी अपने को लगे कि नहीं बोरवेल में बहुत पानी है, अपन तो कर लांगा पूरा, लेकिन क्योंकि रिचार्ज नहीं हुई रही हो तो वो बोरिंग भी इस बार साथ नहीं देगा जो हमेशा चलता है अपना पूरा साल भर, तो वो भी साथ नहीं देने वाला है। तो इसलिए अपने को थोड़ा ध्यान रखना है और बचत करनी, इस बार अपनी पानी की आमदनी थोड़ा कम है, बैंक बैलेंस कम है थोड़ा, तो खर्चा भी अपना कम करो,
0: जरूरत पड़े उतना ही
1: समझ के जो। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है।
0: अच्छी बात बताई आपने, तो आपसे बात करने को सबसे अच्छा फायदा रही हो कि अभी बखत भली बखत है, अभी अपन चेंज जाऊंगा तो

0: आगे तकलीफ नहीं पड़ेगी अपना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही समय पे जग गए अपन,
0: बहुत बढ़िया। हमने एक बात और बताओ सुदीन भाई
1: जी,
0: कि अपने जो ये तो हो गया अपना खेती बाड़ी का पानी की बात
1: जी,
0: ना पेयजल स्वरूप भी अपना जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल स्वरूप भी अपन कहीं सुरक्षा कर सका, ना कहीं अपन चिंता कर सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पेयजल के लिए जब अपने को बचत करनी है तो आप अगर गांव का पूरा पानी का जो खर्चा है वो देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि अपना ज्यादा से ज्यादा पानी खेती में खर्च हो जाता है।
0: हाँ, या बात है।
1: पेयजल में मात्र 7-8% लगता है, 90-92% पानी गांव में खेती में लगता है। तो अपन अगर खेती के पानी में बचत करेंगे तो अपनी पेयजल सुरक्षा बनी रहेगी, अपने को पानी में पानी मिलता रहेगा पूरे साल। तो पानी मिलते रहने के लिए जरूरी है कि हम खेती के पानी में बचत करें और पीने के पानी को हम इस तरह सुरक्षित कर लें। दूसरा, जब आप पानी ज्यादा निकालने लगते हो जमीन में से, और अपने आप में मालवा में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, बल्कि सभी दूर ज्यादातर जगह पे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई, पेयजल प्रदाय भूजल से होता है। तो अगर हमने पानी ज्यादा निकाला तो उसमें बहुत सारे अंदर ऐसे तत्व हैं जमीन में, चट्टानों में, जो पानी में आने लगते हैं ज्यादा पानी निकालने के कारण। तो जैसे सॉल्ट है, हार्डनेस पानी की बढ़ जाएगी, पानी खारा होना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो ये सॉल्ट ज्यादा आना, खारा हो जाना, ये सब पानी की गुणवत्ता को कमजोर करते हैं। और ये तभी होता है जब हम पानी ज्यादा निकाल लेते हैं। तो आपने पानी अगर ज्यादा निकाला तो पानी आपका खारा भी होगा, उसमें सॉल्ट भी आएंगे, हार्ड वाटर भी बन जाएगा, तो उससे आपको पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। खाली हाँ, कोई दूसरी चीज नहीं मिली आपको, लेकिन पानी हार्ड हो गया, उसमें सॉल्ट ज्यादा आ गए, तो आपका पेट गड़बड़ होगा, आपकी पाचन शक्ति कम हो जाएगी। मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, वो ये कि कुछ कुछ पानी जब आप ज्यादा निकालते हैं और पानी में सॉल्ट ज्यादा हो जाता है तो आपके घर में दाल पकने में भी समय ज्यादा लगेगा।
0: अरे क्या बात है।
1: तो दाल जिसको पुराना मुहावरा है नहीं अपनी की दाल नहीं गलेगी।
0: हाँ।
1: तो अपनी दाल नहीं गलेगी भैया सर।
0: अरे
1: तो पानी की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत जरूरी। पानी की गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं होगी तो घर पे अपनी घर वाली माता बहने सब जो है शिकायत अपना ही करेंगी, अरे कहीं हुई क्यों पानी के, दाल नहीं पकी रही आज। तो दाल नहीं पकेगी, कहीं कहीं तो ये हो जाए ना, कुछ गांव में तो पानी ज्यादा खराब हो जाए तो चाय फटने लगे। तो चाय तो अपन चाय से भी गया फिर तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी की गुणवत्ता, ज्यादा पानी निकालने से और ज्यादा खराब होती है। तो ज्यादा पानी नहीं निकालना अपने को, पानी कम वापरो, पानी कम निकालो। और इसके साथ साथ अपने जो गांव के तालाब वगैरह हैं अभी,
0: मैं ये पूछ रहा था,
1: हाँ,
0: तालाब और बावड़ी और कुआ, इनके स्वरूप कोई सलाह है कहीं आपकी?
1: इनको भी हाँ, इनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अभी अगर कुएं में पानी अच्छा है, तालाब में पानी अच्छा है, तो उसको गंदा मत होने दो आप। गंदे होने से पानी अनुपयोगी हो जाता है। कुएं की साफ सफाई अगर करना है तो अभी करवा लो, और पानी आएगा बारिश का तो भर जाएगा थोड़ा सा। अभी कुएं में जगह है अभी साफ सफाई करने की, तो कुएं की साफ सफाई करा लो अभी भी अपन। कुएं में पानी, हाँ, तो कुएं में पानी अपना जितनी भी बारिश बची है अभी, उसका पानी जब कुएं में आएगा तो कुएं में पानी साफ रहेगा। तो अपने तालाब को अच्छा रखना है, कुएं को अच्छा रखना है, वो भी बहुत जरूरी है। और अपने को खास तौर पे तो यही ध्यान रखना है कि सभी को पानी मिल सके, पूरे गांव को। ऐसा नहीं हो कि कोई छूटी जाए पानी को। तो कोई भी पानी अपना सबके लिए दिया भगवान ने, तो सबको मिले, अच्छे से मिले, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को गंदा पानी पिलाने से बिल्कुल बचाएं, क्योंकि गंदा पानी पिएंगे बीमार होंगे। तो वो गंदा पानी भी हम टेस्ट करते रहें बीच बीच में, अभी सरकारी लेबोरेटरी है उसमें टेस्ट करें। और सबसे बड़ी बात कि हम पीने के लिए भी जो पानी लेते हैं गांव से, वो भी अपन घर में संभाल के रखें और उसको साफ जगह पे रखें।
0: अच्छा,
1: ऐसा नहीं हो कि वो पानी गंदा हो जाए कहीं जहां हमने रखा है, उसको साफ। अपने गांव में ज्यादातर लोग ध्यान रखते हैं कि साफ रखते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या बनी रहती है कि कहीं गंदा पानी भी है, कहीं अपना पानी के बर्तन ठीक से धोए नहीं है। तो वो सब ध्यान रखें अपन, क्योंकि इस बार बीमारियां थोड़ी ज्यादा होंगी, जब पानी कम रहेगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो वो बीमारी से भी अपने बच्चों को बचाना है, बहुत जरूरी है।
0: भैया साहब, एक बात और हमके बताओ
1: जी,
0: बारिश को पानी सहेजने शुरू, और अपन कोई जैसे घर का ऊपर में अपन कोई छत को पानी अपन पाइप में निकाली दा, या गांव में जो अपना खेत का मायने जहाँ ढलान से वहाँ की जगह से गड्ढा कर दा, ऐसा कुछ भी कर सकता नहीं?
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इस बार जब बारिश जितनी भी बची है और कम आने वाली है, तो हमको बूंद बूंद का हिसाब रखना पड़ेगा। तो घर की छत पे से जो पानी आता है वो पानी बह के सड़क पे चला जाता है। अगर आपके गांव में नाली है तो नाली में बह के चला जाएगा, सड़क पे बह के चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी छत टीन की नहीं है, अगर चद्दर वाली छत नहीं है, चद्दर वाली छत में आपको ये नहीं करना है,

0: में झिरपेगा, पीली मिट्टी में मुरम में जाएगा, और उसके बाद फिर वो अपना ब्रस्ता ढूंढ के और आपके पानी के जो स्रोत हैं उसमें पहुंच जाएगा। एक और काम आप ये कर सकते हो कि जो हाथ से ड्रिल करने वाली पाइल होती है, हाथ से करते हैं पाइल अपन,
1: हाँ
0: तो
1: पाइल आती है ना जैसे 10 इंच
0: पाइल
1: की,
0: होती है
1: 12 इंच की
0: जी,
1: ऐसी।
0: हाँ 12 इंच की पाइल अपन कर दें 20 फिट तक, बीस
1: अच्छा
0: फिट तक तो 20 फिट तक हो जाती है वो, 15-20 फिट तक, जहाँ तक कड़क मिट्टी नहीं आती है। तो जब कड़क मिट्टी आने लगे तो खुद ही रोक देगा वो, और तब तक वो पानी जाने की व्यवस्था उसमें हो जाती है। तो वो पाइल कर दें, उसमें केसिंग पाइप अपन डाल दें प्लास्टिक का, और उसके अंदर अपन पानी छोड़ दें। तो
1: अच्छा
0: ये भी एक अच्छा तरीका है कि पानी 20-25 फीट नीचे चला जाता है।
1: तो मैं पाइप छोड़ना
0: ध्यान,
1: जरूरी, कहीं ऐसा डायरेक्ट
0: जरूरी
1: नहीं छोड़ सकता
0: जरूरी
1: पानी।
0: जरूरी जरूरी, पाइप छोड़ने से वो पानी बहुत नीचे पहुंच जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर ही ऊपर पानी रह जाएगा। तो अगर पाइप से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी अगर कर सकते, पाइप नहीं लगाने का मन है अपना कि भाई नहीं लगाना हमको मान लो पाइप, तो भी अपन 6 फिट का गड्ढा तो कर ही दे, जब तक काली मिट्टी पार नहीं हो जाए। तो उससे कम से कम काली मिट्टी की सतह के नीचे पानी चला जाएगा। काली मिट्टी जो होती है वो पानी को सोख लेती है और फिर पानी को नीचे जाने नहीं देती है। तो इसलिए ये रहता है कि आप उसको पार कर लो अगर, तो पानी नीचे अपना रास्ता बना लेता है, पहुंच जाता है।
1: तो जैसे कितराज भाई
0: इसमें
1: बहन के घर 4x4 की जगह नहीं हो तो अपना पाइल करके भी कर ही सके, ये
0: नहीं हो तो पाइल करके कर दो, बढ़िया।
1: बढ़िया, अपने
0: हाँ
1: 12 इंच का गड्ढा में काम हो जाएगा।
0: हाँ अपना पाइल करो ना उसमें, कर दो वो केसिंग पाइप लगा दो उसमें, केसिंग पाइप लगाना जरूरी है, नहीं तो मिट्टी धसक जाएगी फिर से,
1: अरे
0: तो
1: हाँ
0: वो
1: यह
0: लगा
1: बात
0: दो।
1: भी ठीक।
0: हाँ वो लगा दो, तो ये जरूरी है। उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दो, ढक्कन में छेद कर दो ताकि हवा आने जाने का रास्ता बना रहे।
1: अरे
0: वो
1: वाह,
0: ढक्कन से पैक नहीं करना उसको अपने को, पैक कर दोगे तो फिर हवा नहीं निकले, हवा नहीं निकलेगी तो पानी नीचे नहीं जाएगा।
1: सही बात,
0: तो
1: अच्छा
0: ये करना जरूरी है।
1: वाह दब।
0: तो उसमें उसमें ये करें। दूसरा, किस किस को नहीं करना है, देखिए अगर छत आपकी टीन की है, चद्दर वाला छत है अपनी, तो उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि चद्दर पे अगर पानी गिरता है, टिन पे गिरता है, तो वो पानी फिर उसके साथ में टिन और दूसरी कोई भारी धातु, हैवी मेटल बोलते हैं जिसको हम, वो लेके नीचे आता है फिर साथ।
1: अच्छो, यह अच्छी बात
0: हाँ
1: बताई आपने।
0: हाँ तो चद्दर वाली छत से नहीं करना अपने। चद्दर वाली छत आई रही है तो ठीक है, चद्दर वाली छत का पानी नीचे जान दो, उसको झिड़प के अपने नाले में चला जाए, वहां धरती उसके टेक केयर कर लेगी, खुद ही अपने ध्यान रख लेगी। लेकिन अपने को उसको जानबूझ के धरती में नहीं पहुंचाना है, क्योंकि फिर वो उसकी जो फिल्ट्रेशन होती है वो कम हो जाएगी और वो हैवी मेटल उसमें पानी में जा सकते हैं। तो
1: वाह
0: अपने को
1: दो,
0: चद्दर वाला पानी नहीं लेना है, पक्की छत का लेना है, सीमेंट वाली छत का।
1: बहुत
0: उसमें
1: बढ़िया
0: कोई भी,
1: आपने
0: हाँ ये जरूरी है समझना,
1: आपने
0: और
1: हमारे
0: कोई
1: किसान श्रोता की और कोई खास बात बताना चाहो चलता चलता, तो आप बताओ।
0: और कोई भी पानी आप सीधे बोरवेल में मत जोड़ना, कहीं पे भी, चाहे वो खेत हो चाहे घर हो, सीधे बोरवेल में कभी छेद करके, बहुत सारे लोग, घना सारे लोग करे ही कि बोरवेल में छेद कर जाना पानी चलो जाएगा। अरे पानी तो चलो जाएगा दादा, लेकिन बोरवेल के अंदर जो आपकी मोटर है, पंप है, उस सब के नुकसान कर ही सके वो,
1: ओहो
0: मिट्टी चली जाए तो इसलिए उसमें मत जोड़ना कभी भी।
1: जो
0: तो
1: सावधानी।
0: बोरवेल को, हाँ बोरवेल को अपना पक्का सुरक्षित बना के रखो, उसके पास में गड्ढा कर दो, उसमें जाने दो पानी,
1: अरे वाह।
0: बोरवेल से 5-7 फीट दूर कर दो गड्ढा, उसमें जाने दो पानी, ढूंढ लेगा रास्ता अपना। लेकिन उसको करके उसके अंदर छेद करके
1: डायरेक्ट नहीं
0: डालने से
1: नाखनो।
0: डायरेक्ट नहीं नाखूंगा, कभी नहीं कभी नहीं, वो नहीं करना चाहिए।
1: वाह साहब,
0: तो
1: सुधींद्र मोहन
0: ये
1: शर्मा साहब, आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि
0: जी
1: आपने
0: धन्यवाद,
1: हमारा
0: और बात करांगे
1: किसान।
0: फिर, और चर्चा करता रहूंगा अपन दोनों
1: बिल्कुल
0: में
1: बिल्कुल,
0: आपसे।
1: आपने
0: बिल्कुल
1: हमारा श्रोता स्वरूप बहुत अच्छी जानकारी दी,
0: जी
1: आपके
0: जी
1: पास
0: जी
1: एक
0: जी
1: बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: धन्यवाद
2: भाइयों, अभी अपन ने डॉक्टर सुधींद्र मोहन शर्मा जी उनसे ये बात करी, और हमारे किसान भाई उनके उनने इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी कि हमारे मालूम ही नहीं थो। जैसे कि टीन की छत हो जिनका मकान में, उनको पानी सीधे नीचे नहीं नापनो। अगर अपन ने जल पुनर्भरण में टीन की छत को पानी डालो तो उसमें दूसरा धातु ना को भी नुकसान अपने पीने पानी में मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी और बहुत ज़रूरी बात की सर जरूरी था कि हम एक भूजल वैज्ञानिक से बात करा, तो उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करा कि हमारे जो किसान भाई बहन हों और जितना भी श्रोता भाई बहन हों ये सुन रहा था, वे एक से ज़रूर लाभ उठाएगा। तो भाई लोग अब सुना एक संदेश।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई लोग, अब बारी है एक लोकगीत की। हम सुनाएंगे भाई सुंदरलाल मालवी ने उनकी मंडली को गायो यो मालवी लोकगीत।

आनंद आएगी उन्हें लोकगीत में। तो भाई तम वेगा वेगा आओ गणेश, आने वाला है गणेश जी भी, तो चौपाल पे तो अपन चिंता कर ही ला, न एक खास बात की और चिंता करा अपन, वह है अपना मंडीना का भाव का। तो अपने यहाँ मंडीना का भाव आई गया है चौपाल पे, तो अपन बताइए ना किसान भाई उनके, ये भाव है कृषि उपज मंडी संयोगितागंज मतलब छावनी मंडी का, इंदौर का भाव है। एक में देखो भाई सोयाबीन का जो भाव रहा वो रहा 4,500 रुपया कुंटल से लेके 7,150 रुपया कुंटल, है नहीं ना। मॉडल भाव रहे हो 6,275 रुपया कुंटल। ना आवक इसकी रही भैया 1,020 बोरी की। चना जो है उनको भाव रहे हो 5,405 रुपया से लेके 6,605 रुपया कुंटल। ना मॉडल भाव 5,705 रुपया यानी 5,705 रुपया। उनकी आवक रही 69 बोरी की। डॉलर चना जो है उनकी 1,290 बोरी की आवक रही। न भाव रहा 6,000 रुपया कुंटल से लेके 9,180 रुपया कुंटल। मॉडल भाव रहे हो 8,500 रुपया। राजमा जो है 70 बोरी की आवाखरी 3,500 रुपया से लेके 7,500 यानी 3,500 से 7,500 रुपया को भाव रहे हो, और मॉडल भाव 7,000 रुपया कुंटल को रहे हो। बाजरा जो है उनको भाव 2,100 रुपया कुंटल रहे हो। गेहूँ जो है 2,518 रुपया से लेके 3,125 रुपया को भाव रहे हो। 970 बोरी की आवाखरी न मॉडल भाव 2,636 रुपया रहे हो। मटर जो है 4,250 रुपया से लेके न 4,250 का ही भाव रहा, और मॉडल भाव भी यही रहे हो। इनका अलावा मूंग की भाव और बता दूं मैं, 70 बोरी की आवक भाव 4,005 रुपया से लेके 7,395 रुपया तक रहे हो, और मॉडल भाव रहे हो 6,600 रुपया। तो भाई लोग ये तो भाव हो गया हमारे सब किसान भाई, उनकी जानकारी हो गई कई भाव चल रहा है इंदौर मंडी में। न अब चलता चलता अपन आज की चौपाल को आखिरी लोकगीत सुनांगा, यो है निमाड़ी लोकगीत भाई फतेह सिंह परमार को गायो, सुना।

भाई फतेह सिंह परमार को गाया इन लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम की बखत हुई लगी। कल सुबह खेती की बात में अपन सुनाऊंगा मानसून में नए बाग बगीचे लगाना, न सांझे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में खरीफ फसल में समसामयिक कार्य के बारे में भाई गोवर्धन ढोडरिया से। तो चला और सबसे कहा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संसद समीक्षा दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके

जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद

ने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के चार सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है।
उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:15 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाले अहम निर्णय लिए, जिनसे देश का खेल तंत्र, सामूहिक आर्थिक तंत्र, किसान कल्याण और सिंचाई तंत्र को गति प्राप्त होगी। आइए इन निर्णयों पर व्यापक चर्चा के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा जी का। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: जैसा कि हम जानते हैं, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और बहुत अहम फैसले लिए गए जो हमारी इकोनॉमी के जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको लाभान्वित करेंगे। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं आज की अनाउंसमेंट को, ये जो गुलदस्ता आया है निर्णयों का, इस पर आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया क्या होगी?
3: इसके चार हिस्से हैं। एक हिस्सा आपका किसान से जुड़ा हुआ है
2: जी,
3: एक हिस्सा जो जलाशय हमारे हैं जिनके ऊपर गुंजाइश है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करें, तो वहां पर सौर ऊर्जा के लिए संभावनाएं तलाशी गई है। तीसरा जो विषय है कि हमारे लिए ईंधन आज के समय में ऊर्जा को लेकर के और खासतौर पे खाड़ी संकट के बाद ऊर्जा को लेकर के नई चर्चा शुरू हुई है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। और चौथा, अभी जैसे राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, उसमें और कैसे हम अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सके, उसके लिए खेलो इंडिया जो योजना है उसके तहत नए प्रावधानों की बात की गई है। मुझे लगता है कि आप अगर पूरे तंत्र को देखिए, हम लोग अर्थतंत्र की जब बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जहां पर कृषि एक अहम हिस्सेदारी है। हम लोग कहते हैं कि 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति कृषि पर निर्भर है। उनके लिए जो योजना है जो कि 2026-27 यानी कि इस वित्त वर्ष में खत्म हो रही थी, उसे 2031 तक के बढ़ाने की बात है। यानी कि किसानों के लिए आपने जो है अतिरिक्त संसाधन का इंतजाम कुछ और समय के लिए कर दिया है। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो सौर ऊर्जा का मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको उसके लिए कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है। इससे हमारे देश में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे ईंधन की बात है, पेट्रोल डीजल की हम लोग बात करें, गैस की बात करें, वहां पर आंकड़ों का क्या योगदान होता है, वो इस तीसरी जो बड़े फैसले हैं समुद्र मंथन का, उसका जुड़ा हुआ है। और खेल के लिए जो है इस समय में जितने प्रोत्साहन देने की जरूरत है, वो मुझे लगता है। तो एक पूरा का पूरा तंत्र जो है उसको विकसित करने की योजना है, बजाय कि हमें किसी खास हिस्से के ऊपर विशेष ध्यान।
2: बिल्कुल, सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजंस है जो किसी भी नागरिक के लिए या हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को

0: लाभान्वित करते हैं। अगर हम सबसे पहले, जैसे आपने भी जिक्र किया, जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसका जो एक्सटेंशन किया गया है, जैसा आपने कहा कि 65% लोग एग्रीकल्चर में लिप्त है, खासकर जो छोटे और सीमांत किसान है, उनके लिए इसका क्या महत्व रहा है इस योजना का, और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है ये उनके लिए कितना क्रूशियल रहेगा?
1: इसके पहले मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा। 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, और उस समय एक बड़ी आलोचना ये की गई थी कि अंतरिम बजट में आप कोई बड़ी घोषणा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अंतरिम बजट में अगर सरकार बहुमत में है, सरकार के पास विश्वास मत है और चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो कोई भी बड़ी घोषणा की जा सकती है, जो कि 2019 के अंतरिम बजट में की गई। दूसरी, जो उस समय बात कही गई कि 6,000 रूपये से किसानों का क्या होता है, आप 6,000 रूपया मतलब 3 किस्तों में आप 2,000 रूपया देंगे, लेकिन आप ये देखिए कि इस योजना को लागू हुए 2019 से आज हम लोग 2026 में हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि 85% किसानों ने कर्ज लेने की जरूरत में कमी की है, यानी कि जो बाजार के स्रोत होते हैं या संगठित है या असंगठित है, उनसे जो उनको कर्ज लेना पड़ता था उसमें कमी आई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें फौरी तौर पर जब पैसे की जरूरत होती है वो असंगठित क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां पर ब्याज की दर काफी ज्यादा होती है, चक्रव्यूह में फंसते हैं। तो आप अगर ऐसे लोगों को फसल के ठीक पहले, जो सत्र है, चाहे रबी की हम लोग बात करें, खरीफ की बात करें, उसके ठीक पहले अगर 2,000 रूपये का उनको एक नगद सहायता दी जाती है, तो उसका एक बहुत महत्व होता है। तीसरी बात जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, आंकड़े पे 11 करोड़ किसानों को इसका फायदा हो रहा है। 11 करोड़ किसानों को अगर आप 2,000 रूपये देते हैं एक किस्त में, तो वो कितना ज्यादा, आप देखेंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था में नकदी का संचार कैसे होता है। आप कह सकते हैं एक किसान को 2,000 रूपये मिलते हैं, लेकिन उस गांव में अगर 10 किसान हैं, यानी कि 20,000 रूपये उस गांव में खर्च होने की संभावना बनती है। अभी तक जो हमने देखा है, लगभग 3,10,000 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं, और आगे भी 3,50,000 करोड़ रूपये खर्च करने की बात की गई है। यहां पर यह भी बार बार चर्चा होती रही कि क्या हमें 6,000 रूपये को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई की दर बढ़ी है, उनकी जरूरतें बढ़ी है, तमाम चीजों की लागत में बढ़ोतरी हुई है। तो एक मुद्दा ये जरूर है कि इसको क्या बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल सरकार अभी उस पर कोई फैसला नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 वर्षों का जो बढ़ाया जाना और 3,50,000 करोड़ रूपये का जो अर्थव्यवस्था में संचार होना है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था को व्यापक फायदा पहुंचाएगा।
0: तो आपको लगता है ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ किसानों को डिजिटल इंडिया के द्वारा पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत, एक तरह से ये कोलैबोरेशन भी कही जा सकती है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, जहां वो, जैसा कि नाम में ही निहित है, सम्मान दे रही है हर किसान को कि आपका कितना बड़ा योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में।
1: तो अब अगर आप एक तरफ देश के विकास की बात करें, विकास दर को बढ़ाने की बात करें, 2047 तक विकसित देश बनने की बात करें, और देश की एक बड़ी आबादी जिसमें निर्भर है, जिस पर निर्भर है, उसकी बेहतरी की बात ना करें, तो आपके लिए उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ कृषि की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसान क्या कृषि के इतर कुछ और भी जो गतिविधियां हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं या पशुपालन है, उनके ऊपर वो कितना काम कर रहे हैं, उसमें उनको कितना फायदा, क्योंकि साल में आपने 2 बार तो फसल बुआई कर दी, कटाई कर ली, बीज का समय उसमें क्या करेंगे। तो आप बीज के समय के लिए अगर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की जाए, वहां पर आपको कैसे इसमें मदद मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये समग्र एक व्यवस्था है जो कि किसान और किसानी दोनों की बेहतरी की बात करें।
0: बिल्कुल, अगर हम आज जो अप्रूव हुई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की बात करें, 5,070 करोड़ रुपए की लागत है, और इसमें बात हो रही है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स के विकास की, जिसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होंगे, थोड़ा सा हमें बताएं कि सरल शब्दों में कि ये क्या योजना है।
1: आपको बताएं कि देश की जो सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है NTPC, उन्होंने अपने कई परियोजनाओं में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए, वहां पर उनके पास ऑलरेडी जो है वो जल स्रोत उपलब्ध है, उस जल स्रोत का वो कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि जल स्रोत उनके लिए जो राख है उसको ठंडा करने में, उन सब चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर और क्या कोई इस्तेमाल हो सकता है। अब यही व्यवस्था पूरे देश भर में जितने भी जलाशय हैं, जितने भी नहर हैं, जितने भी औद्योगिक पार्क में जो जल स्रोत हैं, उनके इस्तेमाल करने की बात है। और मैं बताऊं कि फ्लोटिंग सोलर पैनल एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके लिए सबसे सस्ती दर पर बिजली जो है, अब मैं, आप कहेंगे कि सबसे सस्ती बिजली सौर ऊर्जा से, शायद कई लोगों को लगेगा कि नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि सौर ऊर्जा महंगी कही जाती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जमीन की जो लागत है वो इसमें आपको नहीं चुकानी है। दूसरा ये है कि कच्चे माल की कोई लागत नहीं चुकानी है। आपके पास आपने एक पैनल लगाया, आपके लिए प्रकृति ने जो आपको कच्चा माल दिया है उसका इस्तेमाल करना है, जिसके लिए आपको प्रकृति को कुछ नहीं चुकाना है। तो आप उन सभी चीजों को अगर घटा देंगे तो वास्तविक जो लागत होगी उसमें कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी पहल है 5000 मेगावाट की जो बात की जा रही है। और हमारे यहाँ चूंकि अभी तक जो है वो ताप पे निर्भरता बहुत ज्यादा है, आगे भी रहेगी, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, लेकिन हमें विकल्प के तौर पे भी चलना होगा क्योंकि हमारे यहाँ मांग बढ़ रही है। अभी जैसे इस मौसम में आप देखिए कि बारिश होती है, फिर बहुत ज्यादा उमस बढ़ जाती है जहां पर बिजली की मांग काफी ज्यादा है। आपने एक चीज गौर किया होगा कि बीते कुछ सालों में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रिपिंग हुई हो। जितनी जरूरतें रही उतनी जरूरत पूरी की गई और ये जरूरतें और बढ़ेंगी। तो इनका इंतजाम आप कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये एक उस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम,
0: ये बहुत ही नवाचारी योजना है। और इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जब उसके बारे में बताया, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में।
0: और अब रुख करते हैं तीसरे बहुत बड़े फैसले का, समुद्र मंथन जो योजना जिसको आज अप्रूवल मिला कैबिनेट से, जो नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम बताई जा रही है, इसमें 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बात है। कैसे देखते हैं आप इस स्कीम को? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। ये किस तरह से हमारे जो एनर्जी इकोसिस्टम है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, खासकर जो हाल में जिस तरह के ग्लोबल चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं, तो ये कितनी आपको इम्पोर्टेंट स्कीम लगती है? इसके प्रमुख फीचर्स क्या हैं?
1: अगर आप पश्चिम एशिया में जो लड़ाई की स्थिति है उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो है वो पाबंदियां लगाई गई कि आप रसोई गैस के इस्तेमाल में किस तरीके से। फिर बात ये भी है कि पेट्रोल डीजल के मामले में हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए यानी कि कच्चा तेल जो चाहिए वो कितना ज्यादा आपके पास उपलब्ध है। तो अब इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए चले, और कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में बहुत कुछ छिपे हुए हैं जो हमें अंदाजा नहीं है, तो इसीलिए जो योजना बनाई गई है समुद्र मंथन की जो 84,000 करोड़ रुपए की, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से की अगर हम बात करें तो आंकड़े, क्योंकि आप अचानक से कहीं जाकर के आप कहते ना कि वहां पे खुदाई नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में ये स्थिति है, इतनी संभावना है, तब जाकर के आप उसमें वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीगत निवेश होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 जगह जाकर के आपने निवेश कर दिया और 10 जगह में से कहीं कुछ नहीं निकला।
0: हमारी कोस्टलाइन बहुत बड़ी है तो पोटेंशियल भी बहुत होगा।
1: बिल्कुल, तो दो हिस्से, पहला हिस्सा है कि आंकड़े जुटाने के मामले में और दूसरा हिस्सा जो है एक्सप्लोरेशन के मामले में है। और इन दोनों को अगर आप मिला करके देखें तो अंततः इसका फायदा यह है कि जो हमारे पास अभी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1 ट्रिलियन इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग कहते हैं, अब वो 1.6 ट्रिलियन इक्विवेलेंट की बात है। क्या ये हमारी जरूरतों के हिसाब से काफी है? बिल्कुल नहीं है, इससे मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम 88% कच्चा तेल हमने आयात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी भी कमी आती है, अगर 2% की भी कमी आती है, 4% की भी कमी आती है, तो आपको इसका फायदा विदेशी मुद्रा के तौर पर होगा। विदेशी मुद्रा की जो जरूरतें होती हैं उनमें कमी आएगी और वो आपके रुपए पर दबाव को कम करेगा।
0: अश्विनी वैष्णव जी ने हमें समुद्र मंथन के बारे में, इस योजना के महत्व के और लाभों के बारे में जो बताया, आइए वो भी सुनते हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम। एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत का जो पोटेंशियल है देश का, उस पोटेंशियल को इसमें यूटिलाइज करने का पूरा प्लानिंग है।
0: सो शिशिर जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, हमारे किसान कल्याण को लेकर। साथ ही जैसा आपने कहा था कि एक और पहलू खेलो इंडिया स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम को असिस्टेंस के तौर पर जो कुल 36,441 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये आप देश के व्यापक विकास, एक कहें समावेशी विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको?
1: अभी राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं और आपने देखा कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सुधरा है, चाहे वो हम लोग ओलंपिक की भी बात करें, एशियाई खेल आने वाले हैं वहां पर भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो बीते कुछ समय में जो बेहतरी दिखी है उसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाए रखना है, तो ये जो 36,000 करोड़ रुपए की जो योजना है, दरअसल जो हमारी खेल की जो नीति है वो उसको ध्यान में रख करके तैयार की गई। और इसका मकसद ये है कि जो बेहतर है उनको और श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, उनमें और श्रेष्ठता की बात कैसे ली जाए, कैसे उनको मदद दी जाए। मुझे लगता है कि हम जब एशियाई खेल होगा या आने वाले समय में हमारे देश में राष्ट्रमंडल खेलों का भी आयोजन किया जाना है अहमदाबाद में, तो उसका भी फायदा जो है ये जो संसाधन दिए गए हैं कैबिनेट के जरिए वो उनको मिल पाएगा।
0: शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। आज जो कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसले हैं उनके क्या व्यापक फायदे होंगे हम सबको ये रेखांकित करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।
6: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं केसरी फिल्म का गीत। स्वर हैं अरिजीत सिंह और असी कौर के।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आशा भोसले के स्वर में सुनिए रंगीला फिल्म का गीत, बोल हैं महबूब के और संगीत है ए आर रहमान का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म दौड़ से। स्वर हैं आशा भोसले और यशुदास के, बोल हैं महबूब के और संगीत है ए आर रहमान का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए

0: इस संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी

0: को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम

0: भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advanced to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain.
2: Exploration ke liye aur uske baad mein production ke liye बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not.
1: The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme.

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: काला बाजार, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में। बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत है एस डी बर्मन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: असली नकली इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में, रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आप ही के पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम में आपके पत्रों और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। स्वर है अमीन साबरी के, बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का। और इस गीत की फरमाइश की है हमें घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया ने। सनावत मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव एवं काव्यांशी कटारिया ने। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने। जसपुर उत्तराखंड से सुनना चाहते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, फिराकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जीतक बिरक और मिका बिरक। पालदानाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनंजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। शिवमपुरी कॉलोनी खंडवा से सुनना चाहते हैं विजय महोविया, कविता, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कुमार शानू और साधना सरगम के स्वर में सुनिए जुम फिल्म का गीत। बोल हैं इंदिवर के, और इस गीत की फरमाइश की है हमें पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। ग्राम अमलेश्वर से लिख भेजा है हमें डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर ने। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इसी गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, पोतरा, मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं इसी गीत को अभिजीत गवाणकर, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस और एकांश। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि। छत्तीसगढ़ सिग्मा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकी, सन्नी, कोमल यादव। ग्राम नावदाखेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय जाट, पवन सिंह जाट, माही, सार्थक, आदित्य जाट एवं समस्त जाट परिवार। प्रमिलागंज आलोर जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। तालुका नेवासा खुपट्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलगढ़, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और हरिभाऊ बिड़वे। ओम साई राम रेडियो श्रोता संघ झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली और आर डी इंगोले। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अनवर और लता मंगेशकर के स्वर में सुनिए हीर रांझा फिल्म का ये गीत। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की है हमें कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ और शाइना शर्मा ने। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम और स्वराज ने। नसीब रेडियो श्रोता संघ संजय कॉलोनी खंडवा से लिख भेजा है जनाब अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, मोहम्मद हमजा डावर और तुलसीराम वर्मा ने। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवागन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतेरी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास पानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। इसी कड़ी में जुड़े हैं हमारे साथ जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने लिख भेजा है हमें मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सुभाष और सदानंद। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

चित्तचोर, इस फिल्म का गीत सुनिए यशुदास के स्वर में। बोल और संगीत है रविंद्र जैन का, और इस गीत की फरमाइश की है हमें बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूरत, नेहा, दीपक, चेतन, दिलीप, दीक्षा और कुश ने। शाजापुर से लिख भेजा है हमें मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रीचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार ने। इसी कड़ी में जुड़े हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। जय भीम रेडियो श्रोता संघ से सुनना चाहते हैं मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भागवत, अरुणा भगत, लोचना, चेतन और समस्त भगत परिवार। पिंपरी वाशिम से सतीश, अभय, अजय, यश और गब्बा सिंह राठौर। उमरखेड़ से सुनना चाहते हैं मिलिंद खंदारे, भारती, नागसेन, प्रीतम कुमार, सारा, स्वाति, अश्विनी और एम के खंदारे व समस्त खंदारे परिवार। क्रांति नगर नांदेड़ से सुनना चाहते हैं डॉक्टर प्रयेश बड़गांवकर, कंचना, आयुष, शांताबाई, अद्वित, आरवी, प्रज्ञाप्ति और डॉक्टर अभिजीत खंडागर।

लकी और स्पंदन व समस्त वड़गांवकर परिवार। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साईं गायकवाड़। पुणे से लिख भेजा है हमें प्रियंका, पंकज, आर्या और जरूर वरूर से बाबा साहेब वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। सुदामा नगर इंदौर से सुनना चाहते हैं अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता और चित्रा भंडारे। सुदामा नगर से ही सुनना चाहते हैं घनश्याम सिंह, मधु राठौर, सपना चौहान, ग्रंथ चौहान और शुभम सिंह चौहान। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

साजन, इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और कुमार शानू के स्वर में, बोल हैं समीर के और धुन है नदीम श्रवण की। इस गीत की फरमाइश की है हमें दयापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वर्णगे रक्कोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर ने, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने, नांदखेड़ जिला वाशिम से लिख भेजे हमें अशोक चुंबले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदने ने, मुखर्जी नगर इंदौर से सुनना चाहते हैं जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, अनु, विशाल, उर्वशी, कुमारी, प्रियंका, प्रियांशी चौहान, ऋतिक, लक्की, शौर्य, मुक्कू, बसंतीबाई, किशनलाल और महेंद्र मालती चौहान ने। इसी कड़ी में जुड़े हैं धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, आयान, फैजान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी। शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका पंचोली, नंदनी, निखिल और गौरांश पंचोली। ग्राम गुरावा तहसील हरसूद जिला खंडवा से सुनना चाहते हैं नंदलाल राजपूत, राजू, मुनक्काबाई एवं नंदनीबाई राजपूत। नंदानगर इंदौर से अभिषेक चौहान, मनीष यादव, अंशु यादव, हितेंद्र पाटिल, टीना, अभिजीत चौहान, माइकल, सतीश सुमरिया और शिवम चौहान। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

सिलसिला इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है शिवहरी का। इस गीत की फरमाइश की है हमें राजपुर से घिसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे ने। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुथि, दिशा और लवी श्रीवास्तव। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से ही सुनना चाहते हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। सरवानिया महाराज जिला नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन और यशस्वी पाटीदार। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। राजा रामनगर देवास से सुनना चाहते हैं राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन। उपाध्याय नगर देवास से ही सुनना चाहते हैं मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और शिवम वर्मा। रूपाखेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल और निरंजन माली। सुपरमार्केट देवास से ही लिख भेजा है हमें प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी और सनी जसवानी ने। मोहसिनपुरा देवास से सुनना चाहते हैं जमील खान और इमरान खान और फुरखान। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म उत्सव से। स्वर हैं लता मंगेशकर के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत की फरमाइश की है हमें औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिख भेजा है हमें टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा।

प्रतीक, अनिल, जसवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, और कालका से सुभाष चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज और साहिल ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम ने, बहरामपुर टेमा से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, सुभाष, संतोष, दिनेश, मास्टर समर राज और आर्यन, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा ने, कासम कॉलोनी सनावत से सुनना चाहते हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इर्दिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिम मीना और हासिम मीना, अहमदाबाद से भालचंद्र वड़के, जतीन मेहता, विकास वड़के, फुलवा मेहता और नीलेश वड़के, नाज मंजिल महसूल सीतामणि बिहार से सुनना चाहते हैं अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अरकम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा तैमूर बाबू और निवासी हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अहिबा शाहिन, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख और नयासा मुजम्मिल बाबू। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर रिचे प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज का राग यमन कल्याण। हारमोनियम पर हैं शिवनारायण पाटीदार और तबला संगत है यूसुफ खान की।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज को, राग था यमन कल्याण। हारमोनियम पे थे शिवनारायण पाटीदार और तबला संगत थी यूसुफ खान की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।